ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। इस समय दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। समय दिन के 12 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत। पहला गीत फिल्म आरजू से, स्वर है मोहम्मद रफी का।

से ऐसा दिल नशी कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी के सुर में ये गीत सुना, इसका इसको हमने लिया था फिल्म अब्दुल्ला से। यह कारवां फिल्म का गीत स्वर है आशा भोसले का।
1: हरे हरे हरे हरे हरे हरे, आज जो मिली है तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना।

साजना सच्चे की झूठे हैं होटो से कहने दे साजना ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना।

0: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस
1: तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस
0: तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस

मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है।

और हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर, हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर, यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है बाजू भड़क उठे हैं, सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारो, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो, अंगारों का जश्न बनेगा हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा।

0: अब के बरस तुझे धरती की रानी भर देंगे, अब के बरस
1: तुझे धरती की रानी।

अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे।

अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने

है काली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी काली हजूर।

अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, अपना तो खून पानी।

का जनाबे आली आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म का नाम था लोफर। हम आकाशवाणी के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। और आइए अब सुनते हैं NCERT का कार्यक्रम उमंग।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमने भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
3: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
3: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
3: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
3: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
3: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
3: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
3: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
3: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
3: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गाँव में पड़ता है?
3: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
3: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
3: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी
4: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: झपटी लोमड़ी उस रोटी पर जो नीचे थी वहीं खड़ी,
1: जो नीचे थी वहीं खड़ी,
2: झपटी लोमड़ी उस रोटी पर जो नीचे थी वहीं खड़ी,
1: जो नीचे थी वहीं खड़ी।
0: लोमड़ी ने कौवे को यूं बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
3: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
5: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
6: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
4: राजा रवि वर्मा।
6: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे
1: अरे तुम लोगों ने ये क्या किया?
0: कोचू मंगला,
1: तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे ही गंदा कर दिया।
0: ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
2: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
3: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
4: मंगला
5: हाँ?
4: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
5: ठीक है।
4: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
5: हाँ हाँ।
4: उठाकर मुझे दे।
5: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
4: हाँ।
5: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
4: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
5: अरे वाह।
4: और ये इसकी पूंछ।
5: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
4: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।

0: अली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
0: ठीक है,
1: चल चल चल चल, चल। हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
3: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोच्चू ने, देखो तो सही, पूछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
4: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
3: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरुपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अंबा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक

0: कौन है?
1: महाराज ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टाचार्य पद का बड़ा बेटा, इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज, गायन वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
2: अरे तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलीमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
2: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं, राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
2: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ दीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है, इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं, नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने

0: ने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में 2 हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए, और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप एनसीईआरटी के कार्यक्रम में उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
6: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंची, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जाँच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में

0: कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूणकरणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,00,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाब्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांधन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 हुए हैं। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मोमल।

0: मुहमल कार्यक्रम सुन रही प्यारी प्यारी सखियों को मैं आपकी रेडियो सखी ललिता
1: और प्रीति का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो प्रीति, आज हमारी प्यारी बहनों के लिए एक खास दिन है। जैसे कि आपको पता ही है कि इतिहास भी गवाह है कि जल के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका हमेशा सबसे आगे रही है। पुराने जमाने में जब कुएं और बावड़ियों से पानी लाना होता था तो महिलाएं केवल पानी भरकर नहीं लाती थी, बल्कि वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि पनघट के आसपास गंदगी ना हो, पानी को छानकर इस्तेमाल करना है, उसे सहेज कर रखना है। ये हुनर जो है ना, हमें हमारी दादियों से, नानियों से मिला है और उन्होंने हमें ये सिखाया भी है। और आज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक पानी का सबसे बुद्धिमानी से उपयोग जो है ना, हम महिलाएं ही करती हैं। रसोई में कितने पानी की ज़रूरत होती है, कपड़े धोते समय पानी को कैसे बचाना है और बचे हुए पानी को पौधों में कैसे डालना है, ये जो वाटर मैनेजमेंट है ना, ये इसकी असली जो मैनेजर हम महिलाएं ही होती है। और प्रीति, तुम्हें पता है कि जब एक महिला जागती है तो पूरा परिवार जागता है, और अगर हम ठान ले कि हमें अपने जल राशियों को बचाना है तो कोई भी जल स्रोत प्रदूषित नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी जल राशियां जो है सुरक्षित रहें। तो बहनों, इसके लिए हमें कोई बड़े बड़े आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे कदम से भी हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि प्रीति, अगर मैं कहूँ, पहला कदम है कि प्लास्टिक को ना कहें। जब भी हम किसी तालाब या नदी या धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ या बचा हुआ खाना जो है कई बार लोग फेंक देते हैं, तो पानी में फेंका हुआ ये जो प्लास्टिक है ना, सालों तक गलता नहीं है और पानी को ना ये बहुत जहरीला बना देता है। इसके अलावा रसोई की साफ सफाई के जो हमारे तरीके हैं उसमें भी थोड़ा हम बदलाव कर सकते हैं। कपड़े धोते समय जो हम केमिकल वाले डिटर्जेंट और साबुन जो इनका इस्तेमाल है ना, हम अगर सीमित मात्रा में करें तो, क्योंकि यही जो पानी होता है ना, ये लास्ट में जाके हमारे जल स्रोतों में ही मिलता है। और तीसरा कदम ये होना चाहिए कि वर्षा का जो जल है ना, उसको हम संचयन करें। ये आपने सुना भी होगा कि बारिश की एक बूंद भी बहुत कीमती होती है, तो हमारे घरों में बारिश के पानी को सहेजने का इंतजाम करना चाहिए। और राजस्थान, जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान की धरती तो टाँका और बावड़ी की समृद्ध परंपरा यहाँ पर रही है, और हमें उसे फिर से जीवित करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जागरूकता की मशाल है ना, हमें अपने बच्चों में भी बचपन से ही पानी की हर एक बूंद की कीमत सिखानी चाहिए। स्कूलों में भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बिजली वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें बताना चाहिए कि नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और ये सब हम बातें अपने बच्चों से बताते भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रीति?
1: बिल्कुल ललिता, ये बिल्कुल सही है कि जल ही जीवन है। जल के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते, शायद हम खाए बिना रह सकते हैं पर जल बिना नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये है कि हमें पहले इसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। सिर्फ इसका उपयोग करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इसकी देखभाल करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। आज हम देखें, जब भी हम कहीं घूमने करने जाते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ लेके जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम जहाँ जाएँ वहाँ पानी आसपास हो, ऐसी जगह हम चुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और वहीं पर जो भी हम प्लास्टिक लेके गए, कुछ भी कागज़ लेके गए, कागज़ में कुछ लेके, वहीं की वहीं वो फेंक देते हैं। वही उड़कर पानी में जाता है और वही पानी हम, उसी पानी का हम इंजॉय करते हैं। तो सोचने वाले पहले हम उसका संरक्षण करें, फिर हम अगर उसका उपयोग करेंगे तो शायद ये एक अच्छी बात होगी। और हर चीज़ की शुरुआत हमारे घर से ही होनी चाहिए, घर के आसपास से होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को घर में भी पानी का उपयोग सही तरीके से करना सिखाएं तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। अब जैसे अपनी गाड़ी धोनी है, फोर व्हीलर धोना है, छोटे मोटे काम है, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि पाइप से धोना जरूरी नहीं है, आप बास्केट में पानी लेकर भी उसको धो सकते हैं। थोड़े में अगर काम चल रहा हो तो ज़्यादा में हाथ ना डालें, क्योंकि यही जल है, अगर कल खत्म हो गया तो आज जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए इसका बचाव भी जरूरी है, इसकी सुरक्षा भी, और इसकी देखभाल भी। घर में भी हम देख रहे हैं ना कि हमारी जो पानी की टंकियाँ वगैरह, उसको साफ रखें, मंथली उसको धोएं और ढक के रखें। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें, हम ये देख रहे हैं ना कि कोई बीमारियां, मलेरिया वगैरह कहाँ से फैलता है, ये पानी से फैलता है। तो पानी की सुरक्षा सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि पानी की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा है, मानव की सुरक्षा है। और ये सबसे बड़ा जरूरी है कि हाँ, ये पॉलीथीन का जो उपयोग है, ये हमें प्लास्टिक का बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ना तो ये गलता है ना पिघलता है, कुछ नहीं होता, ये एज इट इज वैसा का वैसा रहता है। तो ये है कि अगर ये पानी में जाएगा तो ये वैसा का वैसा रहे, बल्कि पानी को और दूषित कर देगा। वही पानी हम लोग भी पीते हैं, कई बार जानवरों के उपयोग में भी आता है, और ये पानी की थैलियाँ, जो पानी में जो थैलियाँ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटे मोटे जो कुंड बनाए होते हैं वहां पे गाय पानी पीती रही है, पॉलीथीन वहां जाती है और गाय के पेट में चली जाती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम कई बार देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, हमें क्या करना, ये बावड़ी हमारे थोड़ी काम की है, ये पानी हमारे हमारे तो नल वाला पानी काम आता है, ये सोच कर हम आते हैं। उस वक्त हम एक स्वार्थी इंसान बन जाते हैं। अपने स्वार्थ को साइड में कर कर मानवता का सोचे तो ये सबसे बड़ा होगा, और ये सब एकजुट होकर हो सकता है, अकेला इंसान नहीं कर सकता। ये एक संदेश है कि पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बिना कुछ नहीं है, पानी की देखभाल सुरक्षा बहुत जरूरी है। बच्चे भी अगर घर में, हमने देखा ना कि बच्चे जब ब्रश करते हैं तो नल को खुला छोड़ते हैं, ब्रश करते

0: रहते, पानी बहता रहता, नहीं उन्हें बताएं कि जब आपको जरूरत है तो आप मग्गे में ग्लास में पानी ले लीजिए और नल को बंद कर दीजिए। नहा रहे तो शावर से ना नहाएं, बाल्टी से नहाएं, क्योंकि शावर से नहाते तो पानी का कोई अंदाजा नहीं रहता। पानी रोज की घर में धोवा धाई जरूरी नहीं होती है, आप वीकली कर लीजिए। रोज अगर आपके एक बाल्टी में पोछे से काम चलता है तो आप चलाइए। ये छोटी छोटी बचत ही बहुत बड़ा, आज हम देख रहे हैं ना कि चारों तरफ सुनने में भी आ रहा है, देख भी रहे कि पानी की बहुत किल्लत हो रही है। किल्लत कहाँ से हो रही है? या हम ही लोगों से तो हो रही है, पहले इसका दुरुपयोग करते हैं, बाद में इसी के लिए पछताते हैं। तो ऊर्जा भी बचाए और पानी बचाए, ये दोनों ही जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी सेव कीजिए, अपने जीवन को बचाइए। तो ललिता, हमारी बात हमारी सखियों के साथ ऐसे ही जारी रहेगी,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उससे भी सुनाते हैं सखियों का एक प्यारा सा गीत।
1: लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो सखियों, आज जरूरत है आह्वान की। और आज हमारे गांव गांव और शहरों में महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और मेरी बहन, आप सभी से मेरी भी ये अपील है, हम दोनों की अपील है कि अपनी जो है, आप जो भी चर्चा करती हैं उसमें जल सुरक्षा को एक जो मुख्य विषय बनाइए। और आप सभी मिलकर अपने आसपास के सार्वजनिक कुओं तालाबों की सफाई के लिए श्रमदान भी कर सकते हैं। प्रशासन के साथ कर जल संरक्षण की सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। याद रखिए बहनों, धरती पर जीवन तब तक लहराएगा जब तक हमारी जल राशियां स्वच्छ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। समंदर का स्वास्थ्य हमारी छोटी छोटी नदियों और तालाबों की सेहत से जुड़ा है। और नारी शक्ति अगर ठान ले तो मरुधरा में भी गंगा बह जाए, जल की एक एक बूंद सहेजी जाए, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो सुख पाएगी। तो आज इस विश्व महासागर दिवस पर हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने आसपास की हर जल राशि को स्वच्छ रखेंगे, पानी की बर्बादी को जो है रोकेंगे, और प्रकृति के इस अनमोल उपहार का हम सम्मान करेंगे। तो प्रीति, अब हम अपने घर की चौखट को साफ, हम बात कर रहे थे जल की, जल को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो हम घर की चौखट को साफ रखते हैं, सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाते हैं, रंगोली से सजाते हैं, और सिर्फ एक रोज का काम नहीं होता, ये हमारे भीतर बसी स्वच्छता की वो भावना है जो हमारे घर को एक मंदिर बनाती है। तो आज इस जो हमारा कार्यक्रम का अगला विषय है वो यही है कि स्वच्छता की बागडोर जो है ना, वो हम महिलाओं के हाथ में ही है। तो हमारे समाज में महिलाओं को लक्ष्मी, अन्नपूर्णा इन सब के रूप में माना गया है, और हम ये सब अच्छी तरह जानती हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी जी और बरकत जो है उसका वास होता है। प्राचीन काल से ही घरों को सहेजने, बर्तनों को चमकाने और अनाज को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी जो है हम महिलाओं के हाथ में ही रही है, और हमने इन्हें बखूबी से निभाया भी है। यानी स्वच्छता तो महिलाओं के स्वभाव में ही है, और एक तरह से कह सकते हैं कि उनके खून खून में भी शामिल है। लेकिन आज के समय में जब बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, तब स्वच्छता का दायरा सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। अगर हम अपना घर साफ करके कचरा बाहर या सड़क में नाली में फेंक देते हैं तो वो स्वच्छता जो है अधूरी रह जाती है, क्योंकि बाहर जो फैली है वही गंदगी मक्खी मच्छर के रूप में वापस हमारे घर में आ जाती है, तो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बीमार करती है। इसलिए आज वक्त आ गया है कि हम स्वच्छता की बागडोर को अपने हाथों में लें और घर के साथ साथ अपने मोहल्ले को भी और अपने गाँव को, अपने शहर को भी साफ सुथरा बनाने का बीड़ा उठाएं।
1: बिल्कुल ललिता, बिल्कुल सही है। और ललिता, अभी सुना भी है अपन ने, किताबों में पढ़ा भी है कि भारतीय संस्कृति में यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता,
0: बिल्कुल
1: जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये श्लोक सदियों से प्रचलित है। क्यों? क्यों ये इसी तर्ज पर दिखाता है कि घर की स्वच्छता, परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य की बागडोर हमेशा नारी के हाथ में ही होती है। और ये बिल्कुल सच है कि कई बार आपने देखा ना कि अभी समर वेकेशन चल रहा है तो बहनें छुट्टियों में गई हुई हैं बाहर, कोई घूमने गया है तो कोई मम्मी के गया है, कोई तो घर की हालत देखते हैं ना कैसी हो जाती है, घर की तो
0: हाँ
1: घर की आसपास की भी, तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ छुट्टियों में नारी घर पर नहीं है, तो बाहर से देख कर ही पता चल जाता है कि अंदर नारी घर पर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उस नारी के हाथ में ही पूरे घर की साफ सफाई बागडोर होती है, और होनी भी चाहिए। एक कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब हमें लगता है कि यहाँ हमारे बिना काम नहीं चल रहा है तो एक अच्छा भी लगता है कि हाँ कहीं तो हमें पूछा जाता है, अब चाहे वो घर हो या घर के काम हो। तो घर की सबसे ज्यादा जरूरत या कह सकते हैं बागडोर नारी के हाथ में होती है, नारी के लिए ही है। तो ये एक अच्छी बात है बहनों, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें ये चीजें जो हम जो सीख रहे हैं ना वो हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सिखानी चाहिए। जो घर में बच्चे हैं उन्हें भी साफ सफाई के बारे में पूरा बताना चाहिए कि साफ सफाई चीज क्या है और वो हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ी हुई है। अब जैसे हम क्या यार घर में वही साफ सफाई करते हैं तो कचरा बाहर यूं क्यों फेंक देते हैं, हमें क्या मतलब होता है कि बस घर साफ हो गया ना, घर के आसपास का एरिया साफ, फिर वो चाहे कचरा नाली में जाए कहीं जाए तो वही नाली का कचरा नाली में रुकेगा, बदबू फैलाएगा, मच्छर फैलाएगा, वही मलेरिया होगा, डेंगू होगा, मतलब एक छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए हमें इस साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि घर के आसपास कोई कचरा ना हो, और घर में भी अगर हमने डस्टबिन रखा हुआ है और घर में डस्टबिन है तो घर में जो छोटा बड़ा जो कचरा होता है हम सीधा डस्टबिन में डाले, यूं ना कि बाहर अगर कोई थैली खाली लिया बाहर फेंक दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी बताएं कि घर में डस्टबिन रखा है और वो डस्टबिन का कचरा भी ऐसे ही बाहर वगैरह नहीं उछालें, कचरे की गाड़ी आती है उसमें डाली, छोटी छोटी चीजें होती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जिसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और यही ध्यान हम बच्चों को भी बता सकते हैं कि बच्चों को साफ सफाई को लेकर, पानी को लेकर, ऊर्जा को लेकर एक अच्छी अच्छी चीजें इनको सिखा सकते हैं जो हमारे घर से जुड़ी हुई होती है और महिलाओं से जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं ना कि होली दीपावली महिलाएं कैसे घर की साफ सफाई, मतलब घर की काया पलट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो घर का नक्शा बदल जाता है, तो यही कहने में आता है भाई घर को सजाने में तो महिला का सहयोग है और महिला का योगदान। और सही बात है, एक महिला की दुनिया उसके घर में ही समाई होती है। अगर उसे पूछे कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, तो उसे अपने घर का नाम है, मुझे मेरा घर है, क्योंकि उसके लिए सुरंग भी वही है और परिवार भी वही है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है बहनों, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन अच्छी बातों में आप अपना आपको भूल जाती हैं, अपना आपको ना भूलें। घर को साफ सुथरा के चक्कर में अपना भी पूरा ध्यान रखें और बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना, अच्छे संस्कार सिखाना, ये भी एक महिला के हाथ में होती है, वो बखूबी निभाती हैं। बच्चों के बोलने से करने से पता चलता है कि इनके संस्कार बहुत, संस्कार माँ से ही मिलते हैं। वैसे तो पूरी फैमिली का होता है, लेकिन कई बार ऐसे तो कुछ चीज़ों में माँ को ही जोड़ा जाता है, तो माँ से ही मिलते हैं। और बच्चों के संस्कार को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उनकी दैनिक दिनचर्या को लेकर सब चीज़ें एक महिला से जुड़ी होती है, वो अपना फर्ज बहुत खूबी निभाती है। और जहाँ सबसे बड़ी बात तो वो होती है जब एक हाउस वाइफ जो करती करती है, लेकिन जो ऑफिस वर्किंग वूमन होती है उसके लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी दोनों चीज़ों को मैनेज करके, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल कर दोनों चीज़ों को बराबर चलाती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है बहनों। और इसमें है कि आप साफ सफाई का खुद भी ध्यान रखिए, बच्चों को भी सही, अपने आस पड़ोस में भी कोई है ना तो उन्हें भी संदेश दीजिए कि घर के आसपास की सफाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई का देख रेख हम महिलाओं के ऊपर ही होता है। पुरुष तो बाहर चले जाते हैं वर्किंग के लिए, लेकिन घर पे हम रहते हैं, अगर हम एकजुट होकर आसपास की भी सफाई का ध्यान रखें तो कहीं गंदगी भी नहीं होगी, बीमारियां भी नहीं फैलेगी।
0: बिल्कुल प्रीति, आपने कहा कि हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए और खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी कई बहनें ये भी सोच रही होंगी कि अरे भाई हम तो घर संभालते हैं, बच्चे संभाले, बाहर जाकर सफाई करें। तो बहनों आपको बाहर जाकर सड़कें साफ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव जो है असरदार ला सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हैं उपाय। प्रीति तुमने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो साइड में जो नगर पालिका की तरफ से सूखा कचरा, गीला कचरा, इस तरह के डब्बे जो है पड़े रहते हैं, तो रसोई से निकलने वाले जो सब्जी के छिलके होते हैं, बचा हुआ खाना यानी कि गीला कचरा, एक हरे डब्बे में रखिए और प्लास्टिक, कागज, सूखा कचरा जो होता है वो नीले डब्बे में रखिए। तो इस तरह की एक आदत से जो डस्टबिन जो है, अगर हम उसको अलग अलग करके डालते हैं तो कचरे से का जो है सही से निपटारा हो जाता है और आधी गंदगी तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे समुद्रों को हमें बचाना चाहिए, पानियों को बचाना चाहिए, उनमें प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब भी आप राशन लेने जाएं, बाजार जाएं, तो अपने घर से जो कपड़े का या जूट का बना हुआ थैला है उसको लेकर जाएं। कई लोग इसमें आलस कर लेते हैं, प्लास्टिक की थैलियां जो है कई बार नालियों को जाम कर देती है और पर्यावरण जो है ना हमारा इस तरह जहरीला होता जा रहा है और हमारी एक ना से ही ये बहुत बड़ा बदलाव इसमें आ सकता है। और इसके साथ ही साथ पानी का सही रखरखाव, यानी कि जैसे कूलर का पानी छतों पर रखे बर्तनों या टायरों में पानी को बिल्कुल जमा ना होने दे, इससे क्या होगा कि डेंगू और मलेरिया के मच्छर नहीं पनपेंगे और अपने घर की सेहत की चाबी जो है वो आपके ही हाथों में है। तो आपको इसमें किस तरह आप इसमें अपनी जो है अकलमंदी दिखा सकती हैं। तो बहनों अकेले चलना अच्छा है, लेकिन जब हम महिलाएं एक साथ मिलकर चलती हैं तो वो नारी शक्ति का रूप ले लेती है। और आज हमारे गांव हो या शहर हो, महिला जो है जैसा कि मैंने बताया स्वयं से ही सहायताओं से जुड़ी हुई है, कई मंडल भी चला रही हैं, तो वो सिर्फ पैसों की बचत नहीं कर रही है बल्कि ये एक तरह से रोजगार का भी साधन है, समाज में बदलने का, ये समाज को बदलने का एक बड़ा जो है जरिया है। कई गाँव में महिलाओं ने मिलकर अपनी बैठकों में भी ये तय किया है कि अपने गाँव में खुले में शौच को पूरी तरह से बंद करवाएंगी। उन्होंने सरकार की जो स्वच्छता योजनाओं का भी लाभ उठाकर घर घर शौचालय भी बनवाए हैं और आज कई जगहों पर हमारी बहनें जो हैं कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़कर जो है जैविक खाद भी बना रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। तो जब गांव या मोहल्ले की 10 महिलाएं एक साथ मिलकर गंदगी फैलाने वालों को टोकती है ना, तो अच्छे से अच्छे लोग जो है उनको अपनी आदत बदलनी पड़ती है और इसे ही कहते हैं सकारात्मक दबाव। कभी कभी ये दबाव भी बहुत ज़रूरी होता है और हमें इसी ताकत का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो अपनी बहनों से कहूंगी कि एक माँ के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में या फिर एक गृहिणी के रूप में सबसे बड़ा काम हम ही कर सकती है। हमें अपने बच्चों को स्वच्छता का संस्कार देना चाहिए। बच्चों को नहीं सीखते हैं तो हमें उन्हें, हम उन्हें कहते हैं तो बच्चे जो है, हम जो चीज़ हम करते हैं ना वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो हमें, अगर हम खुद से अच्छी चीज़ें करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर हम खुद से कचरा जो है डस्टबिन में डालेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी बचपन से ही ये जो आदत है इसको अपना लेंगे। और स्वच्छता को हमें एक काम नहीं बल्कि अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना चाहिए और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है स्वच्छ सोच, स्वच्छ आदतों के साथ बड़ी होगी तो हमारा देश अपने आप चमक उठेगा। क्यों प्रीति?
1: बिल्कुल सही है ललिता कि घर, स्वच्छता की शुरुआत घर से ही होती है। अगर घर से ही की जाए तो हम कह सकते हैं कि हम अपने गांव, शहर, समाज सबको स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि ये शुरुआत हम जब घर से करते हैं तो हमें हमारे बच्चों को सही से शिक्षा दें। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने सुना होगा, देखा होगा कि लोग ये कहते हैं घर में तो साफ सफाई रखे जाती, बाहर ज्ञान बांट रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया है कहने में पीछे हटती नहीं, तो ये जरूरी है कि पहले हम अपने घर से शुरुआत करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और उन संस्कारों में या फिर स्वच्छता में ये भी आता है कि बच्चों को टाइम से बाल कटवाना, बच्चों के नाखून कटवाना, बच्चों को रोज ब्रश करवाना, ये भी एक सफाई का हिस्सा हो जाती है। और इन सब की जिम्मेदारी भी एक महिला पर ही आती है। तो यहीं से एक शुरुआत करके और बच्चों को पानी की बचत बताना, बच्चों को पानी की देख रेख बताना कि जल हमारे लिए क्या जरूरी है, कि बच्चों को भी हम ये बता सकते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप पानी के आसपास कोई बावड़ी, तालाब या झरनों के आसपास कोई गंदगी देखते हैं तो आप स्वयं उसको साफ कर दीजिए। नगर निगम अपना काम पूरी तरीके से करते हैं लेकिन हो सकता है कई बार उनसे भी कोई चूक हो जाती है। हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो थैली पानी में जा रही है तो कोई उसको हटाएगा। अगर हमारे पास है तो हम उस पानी को, थैली को पानी में से जाने से बचा रोक सकते हैं, उसे एक डस्टबिन में डाल सकते हैं। इतना तो हम भी कर सकते हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। चलिए हम ये नहीं कहते देश के प्रति, लेकिन अपने गाँव, अपने शहर के प्रति तो हमारा फर्ज बनता है ना कि अगर हम कहीं गंदगी देख रहे हैं तो हम उसकी साफ सफाई के लिए, वही है कि नगर पालिका में जाके कह सकते हैं। अगर नगर पालिका कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग कर सकते हैं, और कुछ तो सहयोग तो कर ही सकते हैं या एक कहते हैं दिशा बता सकते हैं कि हम एक जैसे अगर यंग हैं तो एक अपना एक जुट बनाएं, अपनी एक संस्था बनाएं और उस संस्था में ये रखें कि हर महीने हमें यहाँ की सफाई करनी है, वहाँ की। हर चीज को बहनों पैसों से नहीं जोड़ना चाहिए, कुछ को स्वास्थ्य से जोड़ना चाहिए, कुछ अपनेपन से जोड़ना चाहिए, हमें अपने शहर से एक अपनापन है। तो ललिता सफाई को लेकर हमारी चर्चा ऐसे ही रहेगी, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है।

उजाला धरती पे आए चमक चांदनी, होठों पे तेरे जीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा झूमके गाऊंगा, प्यार तेरा होगा बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे।

0: तो प्रीति, हम बात कर रहे थे चाहे महिलाओं के लेकर, तो महिलाओं के लिए अगर सुरक्षा की बात करें, देखभाल की बात करें या स्वच्छता की बात करें, तो हमारे घर में जब कोई नन्ना मेहमान आता है ना, कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, तो पूरा परिवार जो है खुशियों के मानो उनको पंख लग जाते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआएं मांगते हैं। लेकिन क्या आप प्रीति, तुम जानती हो कि दुआओं के साथ साथ माँ के रूप में, एक परिवार के रूप में, जो सबसे पहला और हम अपने बच्चों को मजबूत सुरक्षा कवच दे सकते हैं, वो है सही समय पर टीकाकरण यानी कि वैक्सीन। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि जब बच्चा बिल्कुल भला चंगा है, खेल कूद रहा है, तो फिर उसे अस्पताल ले जाकर सुई क्यों लगवाना, क्यों हम उसे दर्द दें, है ना? तो जरा सी इस बात की अगर हम गहराई से सोचें, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पूरी दुनिया की खतरनाक बीमारियों से लड़ने की उसकी जो ताकत है, जिसे हम इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो बहुत कम होती है। हवा में, मिट्टी में ऐसे कई अदृश्य वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो बच्चे को बहुत जल्दी बीमार कर देते हैं। और टीकाकरण या वैक्सीन का काम ही ये है कि ये बच्चे के जो शरीर के अंदर ऐसी जो फौज होती है, उसको तैयार करता है जो बड़ी और जानलेवा बीमारियों से लड़ सकती है ना? और टीका लगने के बाद अगर वो बीमारी बच्चे के आसपास भी आती है, तो बच्चे का जो शरीर है उसके मुकाबला करके जीत जाता है। तो टीका केवल एक सुई चुभाना नहीं है, बल्कि ये बच्चे को कह सकते हैं कि पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, खसरा और हेपेटाइटिस जैसी कई 12 से अधिक जो जानलेवा बीमारियां होती हैं ना, उससे हमारे बच्चे को एक तरह से सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारी सरकार भी ये चाहती है कि देश का हर बच्चा स्वस्थ रहे, इसीलिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जैसी बेहतरीन योजनाएं भी चलाई है। अक्सर कई बहनें सोचती हैं कि दवाइयाँ और टीके बहुत महंगे होंगे, इनका खर्च हम कैसे उठाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ तक कि आपके गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी टीके जो है ना, बिल्कुल मुफ्त में लगाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो ANM दीदी है या आशा बहनें हैं, घर घर जाकर आपको तारीख भी बताती हैं कि कब कौन सा टीका लगाना है। बस हमें थोड़ी सी जागरूकता दिखानी है कि जब बच्चा पैदा हो तो अस्पताल में मिलने वाला जो टीकाकरण कार्ड है, यानी जिसे हम ममता कार्ड या ई कवच कहते हैं, उसको संभाल कर रखना चाहिए। और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बच्चे को 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में, 9 महीने में कौन सा टीका लगाना है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर उसे अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाकर या कैलेंडर पर निशान बनाकर आप लिख सकती हैं, ताकि कोई भी टीका ना छूटने पाए।
1: बिल्कुल ललिता, एक कह सकते हैं कि टीके की जो शुरुआत होती है वो तभी से हो जाती है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो दिखती बात है बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो माँ को भी अपने जो टीके लगते हैं, टीटी का लगता है, दूसरे टीके जो लगते हैं, वो टाइम टू टाइम लगवाने चाहिए। और एक ये भी है कि हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला का पूरा परीक्षण किया जाता है कि कोई

0: इसकी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, कोई आयरन की कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये सब चीजें आपको, ये है कि आपको चिकित्सा जाना है, और वहां जाते ही आपको फर्स्ट मंथ से ही कार्ड बना के दिया जाता है। जैसे आपने बताया ममता कार्ड, उसमें माँ के टीके और बच्चों के टीकों की पूरा विवरण दिया जाता है। तो बस ये है कि आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है। कई बार हम सोचते हैं ना कि महिला ये सोचती है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे टीके की कहाँ जरूरत है, मैं तो बिल्कुल, लेकिन नहीं, आपको नहीं जरूरत है, लेकिन शायद हो सकता है बच्चों को जरूरत हो। इसलिए इस कॉलेज को छोड़ के हर महीने की 9 तारीख को आप जाइए अस्पताल और अपना पूरा परीक्षण करवाइए और अपनी देखभाल भी करिए, साथ में बच्चे की भी। और बच्चे के टीके से लेकर अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सो रहा है, जग रहा है, खेल रहा है, तो इसको टीके की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमने सुना है, देखा है, जब घर वालों से हम पूछते हैं ना कि बच्चे को ये बीमारी कैसे होगी, ये बच्चा चल क्यों नहीं सकता है, तो उनका एक ही होता है कि इसको फीवर आया था, फीवर में इसने इसके हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। तो ये क्यों बंद कर दिया? अब जैसे हम ग्रामीण शहरों में जाएं और इस बात की अगर हम चर्चा करते हैं, वो कहते हैं देवी देवताओं का है, ये देवी देवताओं का नहीं होता है, ये टीकों का ही सारा चमत्कार होता है कि बच्चे को टाइम टू टाइम सारे टीके लगने चाहिए। देवी देवता अपनी जगह होते हैं लेकिन टीके अपनी जगह होती है। जो डॉक्टरी काम है वो तो डॉक्टर ही करेगा, ठीक है, हमारी एक बहुत बड़ी श्रद्धा होती है अपने गुरुओं के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस अलग चीज को रखकर आप अपना जो इलाज है वो टोटल हॉस्पिटल से, चिकित्सा से कराइए। और आज तो ये देखा गया ना ललिता, कि सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त कर दी है सरकार ने,
1: बिल्कुल
0: आपको बस सिर्फ वहां जाके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है, बाकी सारी कार्रवाई हो जाएगी, और यहाँ तक कि आपके मोबाइल पर आ जाएगा, ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। तो ये भी आपको दिक्कत नहीं कि आपको बार बार जाना है कि आपको आज इस तारीख को बुलाया है, आपका ये कार्ड बाकी, आपकी ये साइन बाकी, वो भी कुछ नहीं है। बस ठीक है, आपको जो डॉक्टर डेट बताता है आपको उसके अनुसार जाना है और अपना चेकअप करवाना है। और बच्चों से जुड़ी बात करें तो बच्चों को टीके जरूर लगाइए। अपने आलस में कई बार ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं टीका अभी नहीं, अगले महीने लगा ले, जो टीका 1.5 महीने में लगना है वो 1.5 महीने में लगेगा, आप उसको 2.5 महीने में लगाएंगे तो वो असर नहीं करेगा, और इसकी आपके जो आलस का बच्चे को जिंदगी भर भुगतान करना पड़ेगा, या तो वो चल नहीं पाएगा, या बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बाद में हम कहते हैं इसमें एक कमी रहेगी, वो कमी क्यों रहेगी, हम उसके अगर जड़ तक जाए तो ये कमी कई बार होता है पेरेंट्स की लापरवाही कह सकते हैं, आलस कह सकते हैं। इसलिए अपने आलस को छोड़ के बच्चों को टीके करना जरूरी है, क्योंकि अब देखते हैं ललिता कार्ड बनाते हैं इंद्रधनुष कार्ड, इंद्रधनुष में भी वो 60 टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, जिससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। उसमें हेपेटाइटिस, टिटनेस का टीका, पोलियो का टीका, ये सारा होता है। अब पोलियो जैसी बीमारी है तो पहले वो होता था कि हॉस्पिटल जाना पड़ता था, एक डेट आती थी भाई किस डेट को लग रहा है, अगर आप उस डेट को नहीं पाए तो आजकल तो सिस्टर घर आ जाती है घर पे पिलाने के लिए। तो आप अपने बच्चे को वो सारी सुविधाएं दे, सरकार आपको इतनी सारी सुविधा दे रही है, बस आपको है कि आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए और आप अपने इस जानकारी को आगे से आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर ग्रामीणों को ये जानकारी का नहीं पता है बहनों, तो आपका ये फर्ज बनता है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आपको उनको बताइए, और अपने बच्चे को भी स्वस्थ रहिए। प्लस आपको अगर किसी सामने वाले का भी लग रहा है कि उनको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी ये ज्ञान, अपनी ये समझदारी आप औरों के साथ भी बांटिए और औरों के भी बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: बिल्कुल प्रीति, कई बार हमारे समाज में, खासकर ग्रामीण इलाकों में भी, जैसे कि आपने कहा कि टीकों को लेकर कुछ गलत फहमियां हैं, अफवाहें फैल जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टीका लगाने से बच्चा बीमार हो जाएगा, उसे बुखार आ जाएगा, या फिर बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो हमारे जमाने में तो पहले टीका ही नहीं लगता था, कई जो वृद्ध महिलाएं वो इस तरह की बातें करती हैं, तब भी हमारे बच्चे तो बड़े हो गए। तो ये सब चीज, जो भ्रांतियां हैं, इसके बारे में हमें सच जानना बहुत जरूरी है कि अगर टीका लगाते हैं ना, टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ रहा है या सुई वाली जगह में थोड़ी सी सूजन आई है, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीका बच्चे के शरीर पर क्या बोलते हैं, अगर टीका बच्चे के शरीर पर बुखार ला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर जो उन संक्रमण से बचने के लिए फौज तैयार हो रही है। और इसे घबराइए नहीं, डॉक्टर की बताई हुई जो दवाई है वो बच्चे को दीजिए, बच्चा समय पर ठीक भी हो जाता है। और पुराना जमाना जो है, पुराने जमाने में इलाज और टीकों की कमी के कारण बहुत सारे बच्चे जो है बचपन में ही दम तोड़ देते थे या हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाते थे। तो आज के दौर में हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए किसी की बातों में ना आइए, केवल डॉक्टर और जो आपकी ANM दीदी है उन पर भरोसा कीजिए। तो बहनों, टीकाकरण सिर्फ बच्चों के जन्म के बाद ही शुरू नहीं होता, बल्कि उसकी शुरुआत तो माँ के गर्भ से ही हो जाती है। तो जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे समय पर टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया के टीके लगाना बहुत जरूरी है। और ये टीका न सिर्फ होने वाली माँ को सुरक्षित रखता है बल्कि गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु को भी टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग महिलाओं की ये जिम्मेदारी है कि वे भी गर्भवती बहू हो बेटी हो

0: देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगण डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो बहनों, जब हम सुबह उठकर, प्रीति रसोई से उठकर रसोई संभालती हैं जब सुबह उठकर, तो बच्चों को हम स्कूल भी भेजते हैं। अभी तो खैर छुट्टियां हैं, दफ्तर या खेतों का काम भी संभालते हैं, और तो भाग दौड़ में हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं और वो है हमारी खुद की सेहत। आपने पहले भी कहा था कि हमें हमारी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार शाम होते होते हमारी पीठ में दर्द होने लगता है, कभी घुटनों से कटकट की आवाज आने लगती है, तो थोड़ी सी सीढ़ियां अगर हम चढ़ते हैं ना तो थकान महसूस होती है। हम इसे मामूली थकान समझकर कई बार टाल देते हैं, लेकिन बहनों आपके शरीर में ना जो कैल्शियम की कमी, ये इस चीज का इशारा होता है कि आपके घुटनों से आवाज क्यों आ रही है। तो महिलाओं के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, और हमारे शरीर की हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम जो है ना एक महत्वपूर्ण तत्व है। वैसे तो सभी चीजें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कैल्शियम की अगर हम बात करें तो पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक महिला के शरीर में जीवन जो एक महिला का शरीर जो है ना जीवन के कई पड़ाव से गुजरता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए माँ के शरीर से ही कैल्शियम जाता है। इसके बाद शिशु को दूध पिलाते समय जब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तब भी माँ के शरीर से ही कैल्शियम खर्च होता है। और फिर 40-45 की उम्र के बाद तो महिलाओं में मासिक धर्म होना भी बंद हो जाता है, यानी कि मेनोपॉज आ जाता है। तब शरीर में हार्मोन्स के बदलाव के कारण हड्डियां जो है बहुत तेजी से कमजोर होती है, और इस स्थिति को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें क्या होता है ना प्रीति, जरा सी चोट लग जाती है तो हड्डी टूटने का डर रहता है। इसीलिए बहनों, अगर पूरे परिवार का बोझ उठाने वाले आपके पैर मजबूत रखने हैं तो कैल्शियम को आपको अपने जीवन में कभी भी कमी महसूस नहीं होने देनी है या होने ही नहीं देनी है। आप क्या कहेंगे प्रीति?
3: बिल्कुल ललिता, कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और पोषक तत्व है। इसमें हम ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब इसमें जो हमें खान पान लेना है वो पूरा लेना है, ये सोच के कि अभी नहीं बाद में ले लूंगी, बाद में नहीं कल ले लूंगी, आज नहीं लिया तो क्या हुआ कल ले लूंगी। और तुमने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम जरूरी वास्तव में महिलाओं को जरूरत होती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा होता है कि एक सबसे प्रकृति की सबसे बड़ी देन होती है माँ बनना। वो सुख भगवान ने माँ एक औरत को दिया है, लेकिन ये सोच सकते हैं एक अपने जैसा जीव अपने के अंदर से निकाल

0: बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम जो खाते हैं पीते हैं वो शिशु वही खाता पीता है। तो सोचिए आपको कितनी कैल्शियम की ज्यादा जरूरी है, तो आप अपने कैल्शियम से जुड़ी हुई वो सारी चीजें लीजिए जो आपको जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आप जब प्रेग्नेंट हो तभी, आप नॉर्मल भी अवस्था में तो भी अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप पूरे घर की बागडोर लेके चलती है। सुबह से लेके रात तक पूरा घर आपके हिसाब से चलता है, आप जैसे बना रही हैं खा रही हैं, तो आपको पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मार्केट से लाके खानी है, सभी चीजें ऐसी होती है जो हमारे घर में उपलब्ध होती है। अब दूध है तो दूध आप पी सकती है, दही ले सकती है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फूल मखाने होते हैं वो खाइए, और जैसे होते हैं मेवे थोड़े से जैसे आप ले सकती हैं, मुनक्का दाख ले सकती हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। डेयरी उत्पादक जैसे है, आप पनीर ले सकती हैं, पनीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। एक होता है रागी, 5 तरह के धान होते हैं, उसमें एक रागी धान होता है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब कह सकते कैल्शियम होता है। और वो मेरे हिसाब से वो जैसे जिनको शुगर पेशेंट महिला है वो भी वो खा सकती है, उन्हें वो कोई दिक्कत नहीं आता। पनीर या अगर कोई शुगर महिला है तो वो उस पनीर को भी खा सकती है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने खाने में उन तत्वों को शामिल कर सकते हैं। और अपना हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है, ये आप पूरी मात्रा में लीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं कोई क्या कहेगा। आप अगर घर में कोई चीज जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां बच्चे नहीं खाते, कई बार बड़ों को पसंद नहीं आती, तो आप अपने लिए भी बना सकती है। तो बहनों अपने खाने की चीजों को लापरवाही में मत लीजिए, क्योंकि आज की लापरवाही कल ही नुकसान देगी। वही जैसे कि ललिता जी ने बताया कि 40 के बाद हमारा शरीर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हमें जोड़ों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमने ढंग से नहीं लिया वक्त, यानी हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है। आप केला खाइए, केले में बहुत सारे कैल्शियम होता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बस खाने वाला होना चाहिए। तो ललिता बहनों से बातें तो बहुत सारी करनी थी।
1: बिल्कुल, और घड़ी जो है इशारा कर रही है कि अब विदा लेने का समय हो चुका है। तो अगली चर्चा में हम अपनी सखियों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे, उनसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है विदा लेने का। तो क्यों ना हम इन्हें नमस्कार कहें। तो मैं ललिता और
0: मैं प्रीति,
1: हम दोनों की ओर से
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: वेस्ट बंगाल सेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टुडे मार्किंग फुल कवरेज ऑफ स्कीम इन द कंट्री। Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies on in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, Direct Benefit Transfer (DBT), Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said that technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor.
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया। जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है इतना पहले कभी नहीं।
1: Home Minister Amit Shah has said that welfare of the poor is the topmost priority of the government. In a social media post, Mr. Shah said that in the last 12 years, the government connected crores of citizens to banking facilities, financial security and self-employment opportunities through welfare schemes like the PM Awas, Jan Dhan, Mudra and PM Swanidhi. The minister said that by integrating the country's poor to the economic mainstream, through basic infrastructure, social security and a better standard of living, a strong foundation for a developed India is being built. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. More from our correspondent.
3: The development marks a major milestone in the journey towards achieving equitable and accessible healthcare for all citizens across the nation. Ayushman Bharat scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. West Bengal will become the 36th state and UT to implement the scheme. Under the scheme, more than 36,000 government and private hospitals are empaneled and more than 44 crore Ayushman cards have been issued till date. Since its launch, the scheme has emerged as a cornerstone of India's healthcare transformation, reducing out-of-pocket expenditure and improving access to quality treatment through a vast network of empaneled public and private hospitals. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the three-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association CPA India region in Chandigarh this afternoon. Our correspondent reports, legislators from across the country will attend the CPA conference being hosted by the Haryana Assembly. Lok Sabha Speaker Om Birla and other dignitaries will address the inaugural session. During the three-day conference, deliberations will be held on topics like the role of legislatures in the nation building Vikasit Bharat 2047 artificial intelligence and making democratic institutions more effective. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. Khan is now being brought back to Kolkata for further questioning. The arrest comes in the wake of the Khalta Assembly re-election held on the 21st of last month. Following the defeat, Khan disappeared from public view, absent from both his home and party office. Considered close to Trinamool leader Abhishek Banerjee, Jahangir Khan was an influential leader of Khalta in South 24 Parganas. After the change of regime in the state, several villagers had raised allegations of land grab and extortion against Jahangir Khan. Trinamool Congress member of parliament in the Rajya Sabha Shukendu Shekhar Roy announced his resignation today. Mr. Roy has stepped down not only from the upper house, but also from the primary membership of the Trinamool Congress. In a press note, Mr. Roy accused the Trinamool Congress of rampant corruption, extreme violence against women, and failures across sectors. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The Delhi High Court today issued notices to the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, over a PIL challenging the newly introduced on-screen marking system for Class 12 board exam answer sheets. A bench of Justices Neena Bansal Krishna and Madhu Jain sought responses from the Centre and CBSE on the plea filed by the National Students' Union of India and SUI. The court has listed the matter for hearing on the 12th of June. The PIL questions the fairness, transparency and reliability of the digital evaluation system adopted by CBSE. It alleged that thousands of students faced problems after the Class 12 results were declared. Meanwhile, the CBSE today said the application window for verification and revaluation for Class 12 examination 2026 remained fully functional from the 2nd to the 7th of this month. During the period, more than 1,60,000 candidates successfully submitted requests for over 3,08,000 answer books. The system remained under continuous monitoring by dedicated cybersecurity teams throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. The National Testing Agency, NTA, has released the Exam City Intimation Slip for the NEET UG 2026 re-examination, scheduled to be held on the 21st of this month. Our correspondent reports that registered candidates can now check their allotted exam city by logging into the official website using their application number and password.
4: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
1: Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. The Israeli military has confirmed executing targeted airstrikes against a major industrial site in southwestern Iran. The military apparatus disclosed that the Israeli Air Force had recently attacked several targets at the petrochemical complex in Mashhad, located in the strategic energy-rich coastal belt of Iran.
5: The latest exchange marks a significant setback for efforts to preserve a ceasefire that had largely held since April. Iran has portrayed its missile launches as a measured response to Israeli military actions in Lebanon, while Israel says its operations are aimed at degrading Iranian military capabilities, preventing further attacks. Diplomatic efforts are now intensifying to prevent the conflict from expanding further. United States President Donald Trump has urged both sides to avoid additional escalation and return to negotiations. Regional mediators are also working to keep communication channels open. Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani held discussions with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi as a part of ongoing efforts to preserve dialogue between Tehran and Washington. The broader negotiations remain complicated by disagreements over maritime access through the Strait of Hormuz and wider regional security arrangements. As military activity continues across multiple fronts, concerns are growing that the latest exchange could trigger a broader regional crisis with implications for energy markets, aviation and international shipping. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Meanwhile, the Indian Embassy in Iran has advised internationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. In a social media post, the embassy also advised the internationals currently present in Iran to exit the country by available means of transport. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio, ushering the country into a special journey of culture, information and broadcasting to echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Akashvani brings forth a voice that echoes through generations, carrying the nation's stories, values and aspirations to listeners across the country. More from our correspondent.
6: Post-independence, AIR expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's External Services Division broadcast to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the News Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country in varied terrains, 24/7 in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashvani News, Delhi.
1: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bunting out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
7: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
7: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
8: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
9: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
7: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद है और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
10: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
7: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
11: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया।
12: आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
13: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
14: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
12: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
15: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
7: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं हमारे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
3: आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: पहचान थी वो जो मिलते थे कभी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
0: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती
1: है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: बाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या बात
0: जैसे
1: है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमन जी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी की बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: की सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या हाल है?
1: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
0: हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
1: बिल्कुल।
0: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
1: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा।

0: तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल, और ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं, और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहां जहां जा रहे हैं पहले वहां के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहां पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे।
0: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है
1: और आपको वापस देता भी है,
0: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा, मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
0: संदेश देता
1: है। तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया, तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे, वो भी वापस जवाब देता है। तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए इसका ध्यान।
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
0: जी,
1: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें हम,
0: अब गीत सुना दीजिए,
1: चलिए सुनते हैं गाना।

0: ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस
1: वो हमने बताई
0: दिया है, और पता सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती, तो जब बोलिए तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: बाप के दिनों में।
1: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज भी होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी

0: पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया, वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे, सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही ना होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हांफ कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
0: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बर्दी।
0: चौंकी, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
2: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
3: रूप सुहाना लगता,
2: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। साहब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
2: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
2: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
2: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब।
2: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
2: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
2: ओहो, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसे छठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
2: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
2: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
2: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े,

देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ता।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुझसे कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहां है?
2: मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहां जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहां है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जैन पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी। अब यह

tomato, tomato, what? What's the matter?

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कनें महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो

0: तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है, तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है, हम सब
1: ईंधन का साधन है। और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी, आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक, प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जल स्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरे, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन जी, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे, लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है, जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी
1: बड़ी अच्छी सखियां लिखी,
0: बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है, जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखें तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो हाँ, स्वच्छता, साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर, कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी। लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है। वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं, बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।

0: यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजटी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जल चक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है, जैसे मधुबन देता है सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है।
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवर्मन ने संगीत दिया। फिल्म बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: ना कुछ कहने वाले
0: अरे, आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ।
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया हाँ। तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया,
1: लेकिन
0: आप घबरा गए।
1: हमें लगा कि तपाक से बोले तो कहीं गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, वाले आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है, मतलब है कहाँ में बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं, कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारे एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुभते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार इसमें बढ़ता है। इन्होंने बात लेकर के
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है।

0: भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोले और चिंता में और गुस्से में ना बोले। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी
0: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है। अब नहीं तो कहकर सच में उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात।
0: तो ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप
1: हमें आज ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज?
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी।
0: तो ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना, अभी तो नहीं बनाया नहीं जाता है
1: जी। वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
1: आलू की खस्ता कचौड़ी बनाते हैं। सामग्री है तो

0: मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, आधा छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और आधा छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। और आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना उससे लोइया बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाए।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
0: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी।
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल के भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
0: जी।
1: और अब ये गाना सुनिए।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहां से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूं और उनको मेरे विचार पहुंचा सकता हूं और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूं आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन

0: इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप वन जो डायबिटीज होता है उसमें ही इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप टू डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप वन, टाइप टू और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण की शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप वन का रोगी बन चुका है?
0: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं बनना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण की मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर दें।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए, चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए।
0: श्रोताओं को मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है, या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
0: तो कभी
1: हैं।
0: कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट राय ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है? ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास

0: रिपोर्ट लेके आते हैं, उनमें जैसे कि मैंने कहा पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: वो दूर हो जाता
1: है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है, ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं, मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वह कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयां हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। तो
0: हाँ,
1: इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शन्स ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते हैं। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। बट अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, गड़बड़ता आती है।
1: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है बट अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोस बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो-खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
0: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
1: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है और ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमीन पर का ये बहुत ही उमदा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत है आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
0: जी।
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
1: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
0: जी।
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
0: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताइए, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
1: डायबिटीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमजोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है, और डायबिटीज के जो मरीज है ये काफी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए।

0: और फूड इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फूड है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फूड।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं, या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज्यादा टाइट शूज नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़ी समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: हमें जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है।

0: सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाड्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोन्ड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाड्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
1: यह आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
0: यस
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री। तो व्हाट इज शुगर फ्री?
0: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स हैं जो स्वीट टेस्ट देते हैं पर इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है।
1: जी
0: स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और इसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

पांच के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।

0: इलाहाबाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युग वाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड ओशियंस डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस। जी हाँ दोस्तों, प्रति वर्ष 8 जून को इसे मनाया जाता है और यूं कहें कि इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन, पर्यावरण और जलवायु में महासागरों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके, उनके संरक्षण के लिए लोगों को एकजुट किया जा सके। और दोस्तों, अगर इसके इतिहास पर हम नजर डालें तो इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव जो है पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रतिनिधियों द्वारा रखा गया था और इसके बाद दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में इसे घोषित किया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पर्यावरण जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की हर चीज़ हमारे जीवन में एक अलग स्थान रखती है, एक महत्व रखती है, तो इसीलिए महासागर जो है ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। महासागर पृथ्वी के लगभग 70% से भी अधिक हिस्से को कवर करते हैं और दोस्तों ये ग्रह के कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पाद भी करते हैं। जी हाँ, और ये जलवायु को स्थिर रखने, इंसानों द्वारा उत्सर्जित लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, यूं कह सकते हैं कि महासागर दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए भोजन, आजीविका और दवाओं के प्रमुख स्रोत भी है। जी हाँ, क्योंकि आज अगर हम बात करें महासागर में भोजन और अगर आजीविका की, तो कई लोग जो है मछली उत्पादन जो करते हैं उससे उनकी आजीविका भी चलती है और इस पर लोग भोजन के रूप में भी निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम सब का ये कर्तव्य है कि हमारी जो जलवायु है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो महासागर है, उन्हें हम प्रदूषित ना करें, उनका संरक्षण करें। और इस दिवस पर पूरी दुनिया में दोस्तों विभिन्न कार्यक्रम भी किए जाते हैं, समुद्र तटों और यूं कहें कि वहाँ पर जो आसपास जो है सफाई की जाती है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं ताकि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो यूं हम कह सकते हैं कि महासागरों के महत्व, उनसे मिलने वाले लाभ, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाने के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये दिसंबर में जो है इसकी घोषणा की गई, इसका प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया कि 8 जून से इसे आधिकारिक तौर पर मनाया गया। और दोस्तों, महासागरों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जीवनदायिनी भी है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन जो है, यानी कि हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% से अधिक हिस्सा जो है महासागरों के पौधों द्वारा पैदा किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि फाइटोप्लांकटन है, ये पौधे जो है वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक है। यूँ कहें कि जीवनदायिनी की जैसे हमने बात की, तो वो जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो है वो हमें महासागरों से मिल रही है, वो भी 50% से भी अधिक। और महासागर जो है पृथ्वी की सतह के लगभग 70% के हिस्से को कवर करते हैं, ये हम जानते हैं। तो सोचिए इसमें कितने हजारों, करोड़ों, लाखों पौधे होंगे जो हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं उससे सोखते हैं, यानी कि उसे वो ग्रहण कर रहे हैं और उसके बदले में जो है हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, यानी कि अति ज़्यादा जो है मछली पकड़ रहे हैं। और कई बार जो है हम देखते हैं महासागरों में, सागरों में जो है कई जहाज जो है वो डूब जाते हैं तेल के, तो इन सबसे जो जो है महासागरों को कितना ज़्यादा नुकसान।

होता है, यानी कि हमारे प्रदूषण को कितना, पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, उसमें प्रदूषण होता है। तो इन सब चीजों से हम, हमें जो है हमारे पर्यावरण को अगर प्रदूषित होने से बचाना है, तो इसीलिए दुनिया भर में जितने भी समुद्र तट है उनमें सफाई, समुद्री संरक्षण पर सेमिनार और जितनी भी शैक्षणिक प्रतियोगिताएं होती है या फिर यूं कहें कि जागरूकता रैलियां जो होती है, ये सब इस दिन आयोजित की जाती हैं। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष एक विशेष थीम भी तय की जाती है जो कि समुद्री संरक्षण के नए लक्ष्यों पर आधारित होती है, यानी कि यूं कहें कि किस तरीके से जो है हम समुद्री जीवन से जुड़ सकते हैं, यानी महासागरों के जितने भी संरक्षण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से जो है उनकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब काम जो है सरकार करे, तो उन सरकार के साथ हमें भी सहयोग करने की ज़रूरत है। और वो सहयोग यही है कि हम कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर हम जा रहे हैं, समुद्री तट पर हम जा रहे हैं, तो वहाँ हमें गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी है। और अगर हमें कहीं कोई गंदगी नजर भी आ रही है, कोई पॉलीथीन है, कोई बॉटल्स है, तो हम भी जो है हमारी तरफ से सहयोग कर सकते हैं, यानी कि उन्हें उठा करके किसी कचरा पात्र में, डस्टबिन में डालें, ताकि वहाँ पर साफ सुथरा जो है, अगर समुद्री तट रहेगा तो समुद्र में जो है वो गंदगी नहीं जाएगी, और वो गंदगी अगर समुद्र में नहीं जाएगी तो समुद्र जो है वो प्रदूषित नहीं होगा, और वहाँ के पौधे प्रदूषित नहीं होंगे, वहाँ के जो जलीय जीव हैं उन्हें नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कई बार जो है हमें ऐसा देखने में, सुनने में आता है कि कई समुद्र में, समुद्र के किनारे जो है बहुत से जलीय जीव जो है वो बाहर आकर मर जाते हैं, यानी कि बहुत जगह जो है ऐसी मछलियाँ देखने को मिलती है, और वो सब जो जलीय जीव जिनकी मृत्यु हो जाती है समुद्र के बाहर किनारे के ऊपर, तो वो सब जो है प्रदूषण के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्हें उस जल में जो है, यूं कह सकते हैं हम, उस महासागरों में जो है सांस लेने के लिए पर्याप्त जो है वो सांस नहीं ले पाते हैं, उन्हें अधिक से अधिक प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। तो इसे कम करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है सिर्फ विश्व, हम कह सकते हैं कि मात्र एक दिन, यानी कि विश्व महासागर दिवस, सिर्फ इस दिन नहीं, हर दिन जो है हमें हमारे पूरे पृथ्वी के लिए देना चाहिए, पूरे पर्यावरण के लिए देना चाहिए। तो वहाँ जाकर के अगर हम साफ सफाई रखते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं, जितनी भी जैसे इसमें जागरूकता रैली निकल रही है या जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है उनमें हमें भाग लेना चाहिए, और दूसरे लोगों को भी जो है इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। तो इसीलिए जो है अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जलवायु है वो नियंत्रित रहे, हमारी जलवायु, तो जलवायु नियंत्रण के लिए महासागरों का साफ और सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनके संरक्षण की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी इन्हें साफ रखने की है। तो इसीलिए जो है हम यही कहना चाहेंगे कि विश्व महासागर दिवस जो है वो इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि हर किसी को महासागर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे ज़रूरी तो हमने पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन जो है 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमें समुद्री पौधों से ही मिलती है, तो इसीलिए महासागरों को सुरक्षित और साफ रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम चलेंगे फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनेंगे गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली, गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। गली, गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं गीतों भरी सुरीली दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चमेली फिल्म का ये गीत, सुनी थी चौहान की आवाज में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उन्हें जब हम देखते हैं तो हमारा यूं कह रहे हैं कि सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें उन्हें देखकर एक अलग खुशी महसूस होती है कि हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी शिद्दत से जो है ऐसी स्मारक बनाए, ऐसे स्थल बनाए, तो इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मतलब हमारी पिछली पीढ़ियों की जो कला है, संस्कृति है और इतिहास से जुड़ी इमारतें जो है, स्मारक है, कलाकृतियां हैं, इन सबको सुरक्षित रखना यानी कि ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना है। और ये सुनिश्चित भी करता है दोस्तों कि हमारी समृद्ध विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, क्योंकि कई बार जो है लोग किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो या तो वहां से कोई चीज उठाकर ले आते हैं याद के रूप में, या वहां जाकर के पत्थर से या पेन से या किसी चीज से जो है अपना नाम लिख लेते हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें करने से हम हमारा ही अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी ऐतिहासिक स्थल जो है वो हमारे ही तो हैं। अगर हम अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तो और आने वाले जो देश विदेश से लोग आते हैं, दुनिया भर से जो है लोग देखने के लिए आते हैं हमारे देश में ऐतिहासिक स्थलों को, और जब उन पर ऐसी ये छवि पड़ती है, वो देखते हैं कि किस तरीके से जो है इतने अच्छे अच्छे स्थानों को, स्थलों को, इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो एक यूं कह सकते हैं कि हमारे ऊपर ही एक गिल्ट सा जो है वो आ जाता है कि हम अपनी ही वस्तुओं का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण से हम सबको बहुत महत्व होगा, यानी कि एक तो इतिहास से हमारा जुड़ाव रहेगा। ये इमारतें हमारे गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रमाण है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, यानी कि अगर ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण होगा तो हम भी, हमारे जितने भी इतिहासकार हैं या जिन्होंने ये सब बनाए हैं, उन सब से जुड़े रहेंगे। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, भावी जो पीढ़ियां हैं, वो भी इन्हें देखेगी और गौरवान्वित हो जाएंगी। और दूसरा, अगर हम पहलू देखें तो पर्यटन और अर्थव्यवस्था के रूप में भी जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके संरक्षण का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि संरक्षित ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं, जिससे यूं कहें कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व की प्राप्ति भी होती है। यानी कि पर्यटक जो है, जैसा कि आपने कहा कि दूर दुनिया, देश दुनिया से जो है घूमने

जाते हैं और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को निहारते हैं, देखते हैं, तो अगर वो संरक्षित रहेंगे तो पर्यटक जो है उनकी ओर आकर्षित होंगे, खींचे चले आएंगे और प्रशंसा करेंगे और दुनिया भर में जो है हमारे देश का गुणगान होगा। तो ये भी है कि पर्यटन की दृष्टि से, और पर्यटन आएंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, यानी कि रोजगार जो है वो भी मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों शैक्षणिक लाभ भी होता है, यानी कि स्थान जो है शोधकर्ताओं और छात्रों को इतिहास, वास्तुकला, प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने का व्यवहारिक अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि कई बार जो है किताबों में जो चीज हमें नहीं मिलती है वो देख करके व्यवहारिक रूप से अगर हम देखते हैं तो हमें मिल जाती है। तो इसीलिए जो है ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है इसका लाभ उठाया जा सके। और हम भारत में, अगर हमारे देश की बात करें, तो भारत में संरक्षण के बहुत से उपाय हैं, यानी कानूनी ढांचा भी है। भारत सरकार प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत ऐसे स्थलों की रक्षा भी करती है। और इसके अलावा सरकारी संस्थाएं भी हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश भर के हजारों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रखरखाव और संरक्षण का मुख्य कार्य करता है। तो मतलब दोस्तों अगर हम सोचें कि किस तरीके से जो है इनका संरक्षण किया जा रहा है, तो इसके लिए भी सरकारी संस्थाएं भी है और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत ऐसे स्थलों की रक्षा भी की जाती है। और पर्यटकों के लिए भी नियम होता है, यानी कि वहां पर हम कई बार देखते हैं कि ऐसे साइन लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं जहां पर लिखा हुआ होता है कि स्मारकों पर गंदगी ना फैलाएं, दीवारों पर कुछ ना लिखें, नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे बुनियादी जो नियम है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यदि हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक स्थलों की, धरोहरों की, उसे किस तरीके से बचा सकते हैं, तो आप ही जो है उसमें ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि स्थलों की यात्रा के दौरान जो है स्वच्छता बनाए रखें, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालें, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, वो कोई भी ऐतिहासिक स्थान हो, चाहे समुद्री तट हो, हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, तो स्वच्छता बनाए रखना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए किसी भी तरह का कचरा है वो यहाँ वहां ना फैलाएं, उसे डस्टबिन में फेंके। और इसके अलावा अगर आपको कहीं कचरा दिख भी जाता है तो आप खुद से जाकर उसे उठा करके डस्टबिन में डाल दें, तो आप भी किसी के प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, यानी कि आपको देखकर भी लोग जागरूक होंगे और वो भी स्वच्छता के प्रति अपनी जो है आपकी इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हमने पहले भी कहा कि स्मारकों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए, जैसे कई लोग जो है उसको खरोंचते हैं, नाम लिखते हैं, कोई पत्थर निकाल कर ले जाते हैं, तो ये चीजें जो है बिल्कुल भी ना करें। तो इससे भी आप जो है अपना योगदान दे सकते हैं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने में, जैसे स्वच्छता बना के रखने में, उसी तरह से स्मारकों को किसी प्रकार के अगर आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो भी आप योगदान ही तो दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों को इन स्थानों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जागरूक करें, क्योंकि जितना अगर आपके आसपास की किसी ऐतिहासिक स्थल की बात है तो जितना आप उसे समझेंगे दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए बाहर से लोग आते हैं, उन्हें आप जागरूक करें, उन्हें आप समझाएं इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में, सांस्कृतिक महत्व के बारे में उसके, तो ये चीजें भी यूं कहें कि संरक्षित रखने में हमारे स्मारकों को, ऐतिहासिक स्थलों को बहुत ज्यादा योगदान देती है। तो इस तरीके से जो है आप भी पूरी तरह से जो है हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी प्रकार का नुकसान न करें, और हमेशा जो है इन स्थलों के प्रति जागरूक रहें और जागरूकता बढ़ाएं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भी ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में पूरी तरह से जो है सरकार का सहयोग कर रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डोर फिल्म का ये गीत प्रतीची और उनकी बैंड की तरफ आवाज में। तो दोस्तों, आज है सोमवार। जी हाँ, और आज है हमारे विशेष कार्यक्रम का दिन, करंट अफेयर्स।

दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से जो है करंट अफेयर्स जो है, यानी कि जितने भी हमारे हाल फिलहाल जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो रखे जाते हैं, और इसकी जानकारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, और यूं कहें कि हर व्यक्ति के लिए जनरल नॉलेज जो है होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम कहीं भी कुछ लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए, यानी कि हम पिछड़ ना जाएं। इसीलिए जो है हमें भी हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के सवाल हैं, कुछ जवाब हैं जो सभी के लिए। दोस्तों, हाल ही में जो है आर प्रज्ञानंदा जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी है उन्होंने नार्वे शतरंज का खिताब जीता है। जी हाँ, नार्वे के ओस्लो में आयोजित नार्वे शतरंज टूर्नामेंट में 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, और वे यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण के लिए जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डिजिटल डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए इस मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान भी शुरू किया है, जहां महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। भारत की पहली स्काई कास्ट विमानन मौसम निगरानी प्रणाली का उद्घाटन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में किया गया। जी हाँ, विमानों के सुरक्षित संचालन और सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए देश की पहली स्काईकास्ट प्रणाली नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर स्थापित की गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है, इस स्थल को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारत ओमान CEPA व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो कि 1 जून 2026 से लागू हो गया है, और ये एक नया और व्यापक आर्थिक समझौता भी है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने भारतीय राज्य की कृषि पहल ने हाल ही में प्राकृतिक खेती के लिए वैश्विक ग्रैंड पुरस्कार जो है वो जीता है। भारत के नए सेमीकंडक्टर रोड मैप यानी कि नीति आयोग का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 120 से 150 अरब अमेरिकी आकार की मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय राज्य ने राज्यव्यापी अभियान योगा 2026 का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया है। नीति आयोग का सेमीकंडक्टर रोड मैप, इसकी जैसे हमने बात की तो 120 150 अरब अमेरिकी डॉलर जो है, हाल ही में जारी नीति आयोग के सेमीकंडक्टर रोड मैप का लक्ष्य वर्ष 2035 तक आकार की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। यानी कि भारत सरकार तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में देश को स्थापित करने के लिए ये रोड मैप तैयार कर रही है। और जहां तक हमने स्काईकास्ट विमानन मौसम प्रणाली की बात की थी, तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित की गई है, और ये भारत की पहली प्रणाली है जो विमानों के लिए
सटीक मौसम पूर्वानुमान और सुरक्षा को बढ़ाती है। दोस्तों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। जी हाँ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में दिल्ली से लगभग 46 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। सुल्तानपुर झील एक मौसमी मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, जिसे मुख्य रूप से यमुना नदी की गुड़गांव नहर और आसपास के खेतों से पानी मिलता है। और दोस्तों, इसे 2021 में रामसर साइट घोषित भी किया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा रैंक रहा। जी हाँ, हाल ही में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में अमेरिका और चीन के बाद भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। ये इंडेक्स 2024 तक के डेटा पर आधारित है और एआई के लिए देशों की तैयारी को 7 प्रमुख क्षेत्रों में आंकता है। कुल 36 देशों की रैंकिंग भी की गई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पीईएसए महोत्सव 2025 का आयोजन जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। जी हाँ, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, उनकी परंपराओं अधिकारों को सम्मान देना और ये आयोजन जनजातीय संस्कृति कला और व्यंजन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करता है। दोस्तों, भारत में वीर बाल दिवस जो है हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, ये गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है। उनकी बहादुरी और बलिदान के सम्मान में 2022 से ये दिवस घोषित किया गया। कवच 4.0 जो एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, गुजरात में वडोदरा अहमदाबाद रेलवे सेक्शन पर लागू किया गया है। जी हाँ, इसमें 17 स्टेशन, 23 टावर, 20 कवच, हर 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल और 2872 आरएफआईडी टैग शामिल है। और ये स्वदेशी एटीपी सिस्टम ट्रेन को टकराव और सिग्नल उल्लंघन से बचाता है, गति नियंत्रण लागू करता है और SIL-4 प्रमाणित करता है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग संगठन ने जारी की है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 की रिपोर्ट जारी की और भारत की जीडीपी वृद्धि 2025-26 के लिए 7

7.2% अनुमानित है, जो सरकारी अनुमान 7.4% से थोड़ी कम है। भारत अब दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। रतापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों में विंध्य पर्वतमाला में ये स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1271 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में से प्रसिद्ध पुरातात्विक और पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखने की घोषणा भी की गई है। और राष्ट्रीय युवा दिवस, जी हाँ, जो कि हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये दिन हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1984 में भारत सरकार ने युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो है हर साल 6 जून को मनाया जाता है।

हाल ही में भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जो है वो हासिल किया और नार्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को पराजित करके प्रतिष्ठित नार्वे शतरंज 2026 का खिताब हासिल किया।

हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली भारत की 33वीं विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा नेवा को अपनाने वाली भारत की 33वीं विधानसभा बनी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 18 नमो ऑक्सीजन पॉक्स का उद्घाटन भी किया गया है। हाल ही में फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। हाल ही में अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन भारतीय मिशन के अंतर्गत नीति निर्माण को समर्थन देने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई नवाचार मंत्र पहल के अंतर्गत टीयर 2 व टीयर 3 शहरों, आकांक्षी जिलों और ग्रामीण भारत के स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया है। जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों को चुना, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एवं टोबैको, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे। अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर उपचार हेतु उन्नत नैनो मेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। विश्वभर के भारतीय मूल के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026 प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स।

दोस्तों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स। अब हम बात कर रहे हैं पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में शुरू की गई ये एक योजना है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेशनल मास्टर प्लान। और इसका मुख्य उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना और लॉजिस्टिक यानी कि सामान ढोने की लागत को कम करके भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। दोस्तों, पीएम गति शक्ति योजना की अगर हम बात करें तो इसमें एकीकृत डिजिटल मंच यानी कि इसके तहत 16 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों जैसे कि सड़क है, रेल है, विमानन है, बंदरगाह है, इनको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है जिससे कि सभी परियोजनाएं बिना किसी देरी के समय पर पूरी हो। और इसके अलावा लॉजिस्टिक लागत में कमी यानी कि परिवहन के विभिन्न साधनों रेलवे, सड़क, जलमार्ग और वायुमार्ग इनको आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल की निर्बाध आवाजाही हो सके और व्यापार में लगने वाला समय भी कम हो। दोस्तों, लागत और समय की बचत भी हो रही है यानी कि पहले विभागों के बीच समन्वय न होने से प्रोजेक्ट लटक जाते थे, लेकिन अब जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित तकनीक से सभी योजनाओं की निगरानी की जाती है और जिससे यूं कहें कि पैसे और समय की भारी बचत भी होती है। और इसमें प्रमुख परियोजनाएं भी है। इस योजना के अंतर्गत 11 औद्योगिक गलियारे, राष्ट्रीय राजमार्गों का तीव्र विस्तार, नए हवाई अड्डों का निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी जो है वो शामिल है। और इस योजना में 16 मुख्य मंत्रालय जो है वो भी शामिल हैं। और यूं कहें कि इस योजना का नाम ही पीएम गति शक्ति योजना है यानी कि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं उनको एक गति देने का काम जो है इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं गीतों भरी दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाजों में दिल से फिल्म का ये गीत। एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति या कहावत कहिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, यानी कि परिणाम मिलता है। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, यदि आप बुरे काम करेंगे तो आपके साथ बुरा परिणाम होगा। तो कर्मों के अनुसार ही भाग्य और फल का निर्माण होता है। और ये कहावत हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए और बुरे कामों से दूर रहने की प्रेरणा देती है, क्योंकि दोस्तों मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर ही आधारित है। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चलता है वो जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। वहीं जो व्यक्ति झूठ, छल और आलस्य का सहारा लेता है उसका अंत हमेशा दुखद होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है, कर्म ही पूजा है। और इसका अर्थ है कि हमें सदा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और हम सब ने जो है रामायण के बारे में सुना है कि रामायण में रावण ने अहंकार किया, इसीलिए उसका अंत हुआ और श्री राम ने सच्चाई का मार्ग अपनाया और विजय पाई। तो ये कहावत हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही फल जो है वो हमें मिलेगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में फना फिल्म का ये गीत। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। यहाँ के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष एवं मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आकाशवाणी @90 के तहत विशेष परिचर्चा। समय रहेगा रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद प्रतिभागी रहेंगी प्रज्ञा पालीवाल कौर, डॉक्टर वर्तिका नंदा और प्रदीप सरदाना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तो आप हमारे केंद्र से सुनते ही रहते हैं। आज रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत होगा एक विशेष कार्यक्रम, एक गीतकार। गीतकार होंगे साहिर लुधियानवी। आप पर या आपके द्वारा लिखे गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 10:30 पर।

ये थे प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस गान।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है, सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गए। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

चली कहत चलियाए कह नृप जाय कहू पन मोरा चले भाट ही है हर

રાજ સમાજ આજુ જોઈ તો ત્રિભુવન જય સમેત વૈદેહી વિનય વિચાર.

இஷ்ட தேவன் சிறுநாய் தமக்கு தாக்கி தக்கி சிவதனு தரையி.

प्राणी जीवन गति अनजानी, प्राणी जीवन गति अनजानी, चलता जो रुख देख हवा का।

0: जीवन गदयन जाने।
1: अभी आप सुन रहे थे वंदना कार्यक्रम ये भक्ति रचनाएं। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुई। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
3: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
4: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारत वंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
5: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़े, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गईं। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपल खूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये 7वीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगावा के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रही। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबोझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश में राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो के इन दौरान देश कई बदलावा रो गवाह बन्यो। प्रधानमंत्री कहो के जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानू जीवन तय करनो है। श्री मोदी कहो के गरीब तबकारी जनता री जिंदगी बेहतर बनावण माए प्रौद्योगिकी की खास काम कीनो है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
6: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही कहो के वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनता रा भलारी योजनावां रे जरिए सेवा

0: ज़बरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करण वाला जवाना ने ई कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू हैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि 13 जून ताई होवण वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो कि मीटिंग में किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावण रा जतन रे बारा में चर्चा करी जावेला।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ बच्चा मकान बनाई चिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना में नल, पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इनने गरीब परिवारा सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो के लाडला 12 साल माए देश माए सगला रो विकास और तेजी उम्फियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली में मीटिंग भी। इनमाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और NCP शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल थिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओर आज जयपुर शहर में गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी ची। नंदपुरी अंडरपास रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तेर 125 बत्ता गैर कानूनी तौर करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3000 बत्ता पुलिस वाला तैनात करी जिया, जबकि कई हल्का माए मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी। जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हल्का माए इंटरनेट पाछो चालन दी संभावना है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटा माथा चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करण री मियाद आज पूरी फेगी। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो कि प्रदेश में 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओर डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद हा। खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका श्री पूनिया माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार जतायो।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा दे के युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: कांग्रेस पार्टी री ओर नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून तक पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरन रो सत्यापन करण और कॉपियां उजू जचावण सारू अर्जी देवण री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालती रहवण रो दावो कीनो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 1,60,000 बत्ता विद्यार्थी 3,08,000 बत्ती कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया

0: पहला दौर माए कॉपी री फोटो कॉपी लेवण री अर्जी नी देवणो हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवण वालाई अगला दौर सारू पात्र वे है। राज्य री सरकारी स्कूलां माए गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी ची ही, जो अब वधार 43 दिन री कर दी री ची है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेक्या। साल 1936 माई आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
1: साल 1956 माए इनरो आकाशवाणी नाम दियो जियो। आज देश भर माए आकाशवाणी रा 551वां केंद्रा रे जरिए 23 भाषावा और 146 बोलियां माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है, जो देश री 98% आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 100 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा और बोलिया माए समाचार और समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
0: अरबे मौसम राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूब गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजिकानी अजमेर कन्ना पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इस दौरान उगनी और उत्तराध उगनी हलका रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है। राज्यरा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार है। 21 जून न मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है। इन तेत जीवन रा स्वस्थ तरीका न बढ़ावो देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रखा जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम माए भागीदारी करण रे अरज कीनी है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं शरीर से और मन से मजबूत होते हैं तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है।
0: आखिर माए खास समाचार एक फेरु सुन ली राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ 22 मकान बनाई चिया। प्रदेश हो राज्य सभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागर 98% आबादी ताई पहुंच। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी 6 समय का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

राम जगत कार्यक्रम सुनना सिंह ग्रामीण भाइयों ना केड़ा है भाई रहा घना घना राम राम भाइयों। हालांकि आप देश रे में मानसून री शुरुआत हो चुकी है, मानसूनी बरसात की शुरुआत हो चुकी है, मानसून आप देश रे में सक्रिय हो गया है, लेकिन आप जिले रो पुराना इतिहास भी है, आप इतने 65 बरसात जाया करे और आप देश रे पश्चिमी छोर मत हो तो मानसून पुगड़ने में टाइम लग्या करे और उसमें पहले जो को गर्मी रो आप कह सकते हैं कि भाई कहर या तेज गर्मी पड़ रही है तो हाँ आप जब तक बरसात नहीं आवे तो खेती किसानी जरा जो काम है वो रही आप तैयारी कर रखा पहले सुन ताकि एन वक्त मत है वो आप समस्या नहीं देवे। कृषि यंत्र बीजारी देखभाल बीजी है, बीज उपचार वगैरह है और वो बीज कुछ ज़्यादा जरूरी है तो निश्चित रूप से आप रखो में और आप ध्यान में आप करो ही जाओ। पर गर्मी से बचाओ खुद रो आप बड़े बुजुर्गों रो आप टाबर टिंगरों रो बच्चों रो और उरे साथ साथ में जो है आप पशुधन रो गर्मी से बचाओ से खुद रो तो ध्यान आप रखना ही रखना ये मैं कहूँ जरूरत नहीं पर आप मत जिम्मेवारी है कि आप ये सब रो ध्यान रखो। पशुओं के वास्ते आप उचित जो छाया और प्रबंध करोड़ जो से हवादार और बाड़ो है दोपहर ही टाइम में आप उन्होंने तेज धूप रे में खुला नहीं छोड़ो और वे साथ में समय समय में थे हमारे आगे जो है पीवन लायक तापमान रो ज़्यादा जरूरी को नहीं पशुओं ने कोई ठंडा पानी फ्रीज रे पानी की आवश्यकता कौन है पर पानी ऊंचे जो छतरी को टंकी वगैरह है वो रो मतलब गर्म तपोड़ो पानी नहीं हुए या पशुओं के वास्ते आप पहले जो पानी रखी हुए और वो उस जगह धूप आएगी और वो पानी तब गए हुए तो आप उन्हें बदलो आप खुद बाहर निकलो तो आप ध्यान रखो कि आप सिर झुक खुल्लो नहीं हुए या अगर आप शुरू से साफो पैरों तो बढ़िया बात है नहीं तो आप कोई कमसो वगैरह आप सिर मत है बांध सको या यहीं डाल सको आप छतरी रो भी प्रयोग कर सको आप अंखियाँ भी ज़्यादा धूप रे मुँह चल रहे हैं तो खुलियाँ नहीं हुए आप कोई जो है कलर रंग आड़ो आप चश्मो लगाओ तो बेहतर है और साथ में आप रखने हमेशा साफ पानी की बोतल आप खुद ही रखो ही रखो ठीक है आगे के थे जरूर अपना पानी मिल से समय समय में आप पानी पीता रहो और अगर आवश्यकता लगे तो आप ORS घोल भी आप रखने रख सकें घर से आप बनाए ले सकें आप साथ में और यथासंभव आप जो को तेज धूप रो जो घंटा हुए दिन रहा वो समय आप निकलन सूँ जो को है परहेज करो वो समय आप बचाओ निकलन सूँ घर सूँ तो भी ज़्यादा बढ़िया बात है। अगर आवश्यक है तो आप निकलना चाहिए पर जितो ज़्यादा हो सके आप धूप से बचाव करना चाहिए और अगर के तो आप शहर में कोई काम वगैरह से आया हो तो आप छायादान छायादार जो स्थान है वह मतलब आप ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करो और अगर गर्मी या लक्षण कुछ भी दिखे थोड़ा बहुत भी तो बिना देर किए बिना गलती किए तुरंत जो है नज़दीकी चिकित्सालय डॉक्टर साहब से आप संपर्क करो। ये तरीके से गर्मी रे में और भी कई तरीके रहे जो है बचाव हो सके कि भाई पेय पदार्थ जो है वो लगातार आप ले उतारो कपड़ा ज़्यादा जो है जो कहना कह आप कसूड़ा कपड़ा नहीं पहरो कपड़ों का रंग ज़्यादा जहाँ तक संभव है आप हल्के कलर रहा या सफ़ेद कलर का कपड़ा पहरो और आप और शरीर अधिकांशतः आप कपड़ों से ढकड़ो रहे आप सनस्क्रीन रो भी अगर प्रयोग कर रहे हो या अपन समझ में आवे तो आप सनस्क्रीन रो भी प्रयोग कर सकें और बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कि जो तो यथासंभव हो सके आप धूप से बचाव करो और वे साथ रे मुए आप देश रे मुए नशा मुक्त भारत रो अभियान भी चल रो है तो नशो जो को है आप देश रे वास्ते सबसे बड़ो अभिशाप है। नशे से अक्सर जो को है युवा पीढ़ी बर्बाद हो जावे हालांकि प्राचीन समय की बात करूँ तो आप गाँव रे मुए जो को है बीड़ी और अफीम वगैरह रो जो है बहुत चलन हतो और

ब्याह शादी और ओसर मोसर रेमो ये नो परोसन रो या ये ना मतलब जो मनवार करण नो भी प्रचलन तो पर समय में परिवर्तन आवने साथ में लोग जागरूक होया है, समाज भी जागरूक होया है और लगभग जो है ये चीजा मतलब हर समाज में मतलब रोक भी लगाई है, पर वो रोज विकृत रूप जो है युवा पीढ़ी में देखने में मिले ही पड़े हो, वो बीड़ी की जगह सिगरेट आदि हो रहा है और कई कई प्रकार और भी नशा आ रहा है। जो को नशे रो व्यापार करे वो आपरी जिम्मेदारी कौन समझे, वो बिल्कुल वो में नैतिकता कौन होया करे, वो सिर्फ और सिर्फ आपरी कमाई या आप कह सको अंधी कमाई लारे दौड़िया करे, पर जो को नशो सेवन कर रहे है कोई भी रूप रे मोर, तो उन्होंने आपरी जिम्मेदारी संबंधी चीज़ें आपरे स्वास्थ्य रहे मतलब ध्यान रखना चाहिए और पूरे साथ साथ में आपरी जो को परिवार के प्रति आपरी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और नशो जो को हर प्रकार से नुकसानदेह, आर्थिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से, और अगर आप कहो तो वो व्यक्ति री जो को है जो को आप इज्जत होया करे वो ना भी वो खत्म कर रख दे, तो आप सब्रो है दायित्व तो बने कि आप जो को नशे से दूर रहो और आप जो को भी नजदीकी है आप मित्रगण है आप और सगा संबंधी है चाहे वो आपों से बड़ा क्यों नहीं वे, आप कोशिश करो उन्हें समझाइश करो और सामाजिक स्तर में थे अजा भी के चलन में है तो आप उन्हें बंद करने वास्ते ये बारे में आवाज उठाऊं। वो साथ साथ रहें जो को ये नशे रो एडो कोई व्यापार कर रहा हो वो रही आप जानकारी निकटतम मतलब जो को पुलिस चौकी पुलिस कोतवाली पुलिस कार्यालय में आप दो और ये मैं नाम जो को सूचना देने वाला नाम गुप्त रखियो जावे, तो क्योंकि जो को आज नशर व्यापार कर रहे है शायद आज आप हमारा कोई घर सो या पर संबंधी वेरी लत में नहीं जुड़ रहा पर हो सके वो लोगों की वजह से आप हमारे परिवार रहा भविष्य में कोई सदस्य वो नशे लत में पड़ जावे, तो कोई भी कारण सो जो को चाहे आप मत सोचो कि भाई आप कुछ की तकलीफ हो आप रो काम करे पड़ी हो, जो को गलत है वो गलत रह से देश रे वास्ते गलत है देश रे वास्ते अभिशाप है, तो नशे सो अगर आप भारत में मुक्त करना है तो हर एक ना आप जिम्मेदारी समझनी पड़ से और आपने खुद ना नशे से दूर रहना है आप प्रयास करना है सबने समझाइश करनी है और जो को नशे रहे जो को व्यापार करे वारी अगर आप ध्यान पड़े तो वही सूचना आप पुलिस कार्यालय में आपना पुलिस में देवनी चाहिए। आज रोज जो को आप और ये तो समसामयिक विषय है और आज रोज जो को मुख्य विषय है वो में यह है कि भाई कसीदाकारी सो आप महिलाओं री भागीदारी या हमारे जीवन स्तर में कई तरीके से आप उठाए सकते, तो जगह जगह जगह विशेष री बात करा आप कश्मीर वगैरह री तो वो थी महिलाएं जो को है कसीदाकारी करे और वे वजह से झुके हमारी वो बड़ी आमदनी रो जरियो बने जो पश्मीना शाल वगैरह है, तो चलो आज भी जो को है हस्तशिल्पी मांग है और हस्तशिल्प जो उत्पाद है हमारी बहुत ज़्यादा मांग ज़्यादा रह करे और उनमें अपन अच्छा मतलब भाव भी मिलिया करे आप भी शुरू सो जैसे मेरे मोए बुनकरी में भी महिलाओं रे योगदान रहो तो भेड़ और को बकरी री ऊन और ऊंट री ऊन से कई प्रकार है जो को है ओढ़न री आप कह सकें शॉल या उन बरड़ी के होता था और बिछावन री दरी या शतरंजी जी का नापक है जी, पर उसके साथ साथ में आप जिले में भी कुछ स्थानों में थे और बाड़मेर जिले जो को आप पड़ोसी जिलो है उसे मोए एक जो को छोटा छोटा कसीदाकारी रहा टुकड़ा और बाद में उन्होंने सिलाई कर पेच वर्क आप उन्होंने कहे और एक जो को बेड शीट या जो को पलंग मतलब बिछावन जो को कपड़ों भी वो रे विदेशों रे में खूब मांग है और आप रे जो को हस्तशिल्प री दुकानों को लोड़ी है वो में जो को आप रे पर्यटक आवे और वो ना देखे और बड़े चाव सो शौक से वो खरीदारी करे और अच्छा खासा वो पैसा भी मिलिया करे। कसीदाकारी रो तात्पर्य सोई और धागे की मदद से कपड़ों में तय किया करने जाने वाली हस्तकला या सजावटी कढ़ाई सु है और ये रहता है तो जो है कपड़े में तय रंग बिरंगे धागा और मोतियां या सितारों का उपयोग कर और आकर्षक और जटिल डिजाइन बनाया जावे, तो
तो ये वजह समझो को है आप।

जहाँ पर प्रधानमंत्री जी जो को एक जिलो एक उत्पाद री भी नीति लावी, तो वो जो को मूल उद्देश्य है जो अगर कि जिके जिले में जो को चीज ज़्यादा गृह उद्योग रे रूप रे मो या महिलाएं और द्वारा की जावे या वो जिले रे वासियों रे द्वारा विशेषता वो जिले री वे जो को बीजा पूरे भारत रे मो या आप कह सकते हैं कि विदेशों तक भी वो पहुँच सके, ये तरीके रे प्रोत्साहन देने वास्ते अड़ी योजनाएं आवे। तो कसीदाकारी जो को है एक प्रकार से महिलाओं आप रे परिवार रे जीवन स्तर न आगे बढ़ाने वास्ते और आप रही भी जो को है खुद रही एक व्यक्तिगत रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने वास्ते एक हमारो जरियो हो सके और आवश्यकता है कि ये चीज़ न और प्रोत्साहित की जावे व्यक्तिगत रूप से भी पारिवारिक रूप से भी और पूरे साथ साथ में आप जो को है जिला शिल्प विकास कौशल केंद्र वगैरह है उनकी मदद ले और ये चीज़ ना आगे बढ़ाया जावे और ये कार्यक्रम जो आप और मुख्य हिस्सो है आप लोक संस्कृति लोक संगीत। तो एक आज अमर भोंगर खान की आवाज़ में बढ़िया एक शिव जीरो लोक भजन सुनो जिकेरा बोल है आज तो हमारे भाग भोले शंकर आए।

थोड़ो शैंपू आए आज तो हमारे पास आज तो

आजित हमारी बात महादेव तो से

हमारी आग महादेव आए बोलो आए आज तो

आप बढ़िया लोक भजन सुनियो और हमें आप बात कर जे जो ग्राम जगत कार्यक्रम आप और ग्रामीण विषयक और कृषि विषय कार्यक्रम है। तो 1 जून से 30 जून तक आप और देश में खेत बचाओ अभियान चल रही है और ये संदर्भ में जो को है आप और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आप और समस्त जो को जिला स्तरीय और कृषि विश्वविद्यालय कृषि कार्यालयों और वहाँ से संपर्क करी हुए और ये जो को मुख्य

उद्देश्य है वो संतुलित उर्वरक प्रयोग है और मृदा परीक्षण है, मृदा जो आपों सेहत कार्ड कैसे जो है और प्राकृतिक खेती ने बढ़ावा दिया जावे, बीजों और उपलब्धता है, बीजों और उपचार है, ये संबंधित है जो आपारी भारत सरकार और लक्ष्य है कि भाई किसानों की आय दोगुनी की जावे, तो वह मैं जो कह भी प्रकार से उन्होंने मदद की जा सके और आधुनिक में तरीका अपनाया जा सके वो सबना अपनाते हुए और कृषि सुसंबंधित जो है कृषि के साथ साथ में वैकल्पिक जो आय बढ़ाने साधन है उन्होंने भी ये में शामिल करते हुए जिके में मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, पशुपालन तो खैर निश्चित रूप से पहले खेती के साथ में जोड़ ही जाए और खेती रे मोए भी कई तरीके से फार्म पॉन्ड बनाया जावे जगह मछली पालन भी हो जावे और खेते रास्ते सिंचाई व्यवस्था भी हो जावे, तो ये विषय मत है आपों जितो ज़्यादा ज़्यादा खुद सक्रिय भागीदारी निभा सको, आप जिला कृषि कार्यालय में संपर्क करो और आप और ये खेती ना जो को आगे बढ़ाने वास्ते है वो मैं नवाचार वास्ते जो को प्रयोग कराऊँ आप उसमें संपर्क कराऊँ और उसमें जानकारी लो। ये अलावा आज 8 जून है और ये दिन जो को है विश्व महासागर दिवस रूप में मनाया जावे और ये जो को शुरुआत थी वो 2008 से हुई है और ये अलावा जो को है विश्व महासागर दिवस रो जो को मुख्य मनाने उद्देश्य यह है कि ये संबंधित जो को खाद्य सुरक्षा है, जैव विविधता है और पारिस्थितिकी संतुलन है ये ना बनाए रखियो जावे, तो अपन जो को है ये तरीके से और भी कई दिवस मनाया जावे तो ऊपर विशेष रूप से जो को है वह क्षेत्र में वह विषय रे मत जागरूकता बढ़ाई जावे और वह रो जो के कई बार जो को है अंधाधुंध दोहन है वह सुन जो को आपना नुकसान हो सके वहाँ से बचाव वास्ते भी जो को है ये रो आयोजन किया जावे। और सबसे बढ़िया बात है कि भाई लोगों ने ये इसमें एक जानकारी मिले और एक ये इसमें जागरूकता बढ़िया करे और उसके बाद में ये ना मनाने जो घोषणा है 2008 में ये निर्णय लिए गए तो और औपचारिक रूप से जो को है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ये दिवस ना 2009 से मनाने घोषणा करी थी और ये अलावा जो को है आपों सबसे बड़ी बात है कि भाई जो को जैव विविधता आप और बनोड़ी रहे और आप और जो को पर्यावरण संतुलन बनो रहे उग्र वास्ते एड़ा आयोजन आवश्यक है और ये तरीके से जापो जो कि हम जागरूकता ला सकें और जाओते जाओते हमें एक लोकगीत आपों और सुनो जेकर बोल है रिडमल।

ਕਟਾੜੋ ਨਵਾਂ ਲਖੇਰੀ।

किसान भाई अभी सुन रहे थे ग्राम जगत कार्यक्रम। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं, समय है शास्त्रीय संगीत का। आइए सुनते हैं बड़े गुलाम अली खान साहब को।

ये थे उस्ताद बड़े अली बड़े गुलाम अली खान। इन्हीं के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आकाशवाणी @90 के तहत विशेष परिचर्चा, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी, भोर से पहले भोर के बाद, बस कुछ ही देर में।

0: हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी है, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जाने माने लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूँ जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो सफर है इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने वर्षों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखे कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए, जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्वियर्थी गीत नहीं आए। खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी तभी उन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IMC में चले गए चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था मुझे याद है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ है। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूप में भी और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं

0: कह सकती है कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद है, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है मछुआरों को, देनी है सुनामी का, हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय है, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स है दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो अडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूँ

0: इस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नाम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील जोशी, मेलविन डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह की भोले बिसरे गीत संगीत सरिता चित्र लोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साथ। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
0: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, अमिला सिंह, इंदु वाई, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स है रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसीलिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा CM डेड उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी में भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को।

0: किसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधे लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने एफएम चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसका सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल से चाहे वो टीवी के चैनल से उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किया है वो इतने अनुपम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
1: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में वीराना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी में आज वो स्टूडियो है,
1: और आज वो बापू धाम बन गया, और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे। इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया, और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा, 3 तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलग जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी

0: उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं। महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस है इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है। किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है। जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। ये कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे। तो दत्त साहब बताते थे कि जब भरत सिंह के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली भरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे। लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से हमें डीजीएम की सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा कि इतने दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती है। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था। हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डिमेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों हो, पंत जी हो, सबने
2: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गांव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले। हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा, और फिर जिस प्रकार के इन करेंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चन आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सवैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर। मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, तो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उससे बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे, खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेटल रिकॉर्ड हो जाता था ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, हम डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
3: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात कर
1: जी कीजिए,
3: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से इस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल देखो इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी।

0: मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर बात पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल से मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज की जो आप कॉलेज में पढ़ाती है तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
1: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है। उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है, पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग है उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
0: अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है, और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारी बारी को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय रंजन जी से एक सवाल करूंगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में?
0: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्घार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं, यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और न ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं,

0: कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस दें। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है, उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में, स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे देश वाले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, रंगन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
2: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताए। जी आप बताए।
3: मेरा सवाल पटना नाम से ही है। खुश हुआ इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाओं से, आपकी भी और मेरी भी सब वहीं से हुई। मेरा नाम मनीष आजाद एडो वाले है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
2: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
3: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम बल्बू गोफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी के प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, तो भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैं तालमेल किया जाए।
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पड़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का, वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था, उस हिसाब से हम कैसे बदले आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग ना, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार,
2: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
2: सखी सहेली चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो बैंक के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसको डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह के रहे वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय है। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी को बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को, और क्या उनका रहता था?
0: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में, सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए, वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।

0: तो जी प्रधानमंत्री तो जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति खासतौर समाचारों के प्रति।
1: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और जितने लोग भी कार से सफर
0: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है
1: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
0: बिल्कुल।
2: नमस्कार, एज इंजीनियर ये मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
0: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हमें मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है।
0: आकाशवाणी
2: तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बात ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट की बात खुलती जा रही है।
0: बस इतना। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है और आप भी आइए।
3: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारे लिए इतनी लंबी यात्रा रही है, उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है? बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
0: संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
3: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी को अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बंद में कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगो युगो तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
4: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
5: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बड़वानी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 8:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध।

0: रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक भारत कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो प्रशंसित भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया। 9 महीने के अंदर 2018 में हम रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,33,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को इस तरीके से उतारना चाहिए। मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के रतनदत्त बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि रतनदत्त बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपरा और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रूपए और घायलों को 50,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,00,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रूपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रूपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए 5 अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव पवन खरूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मेरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: डेवलप द इंडस्ट्रियल इको सिस्टम और जनित पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। विभिन्न योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम प्रोजेक्टर स्टार्टअप बीप टेक या तकनीक पूर्वक व्यवसायों अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पूर्वक व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के सुप्रिया सुले शामिल थे। वही आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उदान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है ना, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। F-35 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या F-35@edcil.gov.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़

0: माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मेहनत भी करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण करते हुए खाद पानी है देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित हो।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एक मैच क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक पहले से उपलब्ध है।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM और डिजिटल स्ट्रीमिंग, हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अनधिकृत उपयोग रोक कर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अन्य निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।

इन्हीं गीतों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। आज के कलाकार हैं सीमा मिश्रा।

0: इन्हीं गीतों के साथ राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे ही केंद्र से एक नाटक। नाटक का शीर्षक है नोक झोंक।
1: नोक झोंक नाटकों के विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत आकाशवाणी हैदराबाद की प्रस्तुति, जिसके लेखक हैं श्री मकसूद अली। तो सुनिए नोक।

पिया बाज प्याला पिया जाए ना, कहा जाए अम्मा किया जाए ना। कुली कुतब की मोहब्बत के वो नकूश दवाम कि जैसे भागमती बाग में हो महवे खराम, फिजा में कैफियत चश्म साकी गुलफाम के फूल फूल से मै खाने हयात का जाम। जमाल हैदराबाद आईना वफा का चमन, वो शहर दानिश व हिकमत दयारे शेर व सुखन। और इसी दयारे शेर व सुखन से नोक झोंक लेके आए हैं।

0: वहां के कलाकार। नोक झोंक एक ऐसी कहानी है जो घर घर की कहानी हो सकती है। मियां बीवी पति पत्नी के जीवन में नोक झोंक का हिसाब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी सब्जी या सालन में नमक, और ये ना हो तो समझिए मीठा बगैर शक्कर। दक्षिणी भाषा अपने खट्टे मीठे मिठास के कारण बहुत ही मजेदार भाषा है। इसे उर्दू की पहली शक्ल भी कहा जा सकता है। नोक झोंक में जवान लड़कियों की शादी, लड़कों की कमी का शिकवा, बाहर कमाने वाले लड़कों की मांगे, रिवायती हैदराबादी घराने की समस्याओं को हास्य और व्यंग द्वारा बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है।
1: जी हमारे बिब्बो की माँ, बिब्बो की माँ,
2: क्या
1: हुआ, क्या बोलना,
2: क्या नहीं हुआ सरकार? रोज जो आपके साथ होता है जो मेरे साथ हुआ सरकार?
1: नहीं समझा मैं, क्या तू साफ साफ बोलो ना जी।
2: सरकार मार मार करके सरकार
1: बहुत बुरा मारे, बहुत कौन मारे?
2: बीबी जी मारे।
1: अरे अरे शौहर में और नौकर में कुछ तो फर्क रखना था
2: ना ये बना सरकार। अरे मैं जा तो सरकार। अरे
1: पाशा आज 20-25 साल से हमारे साथ यही हो रहा है। सुनो हम गए कभी घर से?
2: आपकी बात हो रही ना सरकार?
1: क्या
2: मैं जा तो सरकार।
1: चलो पूछ तो ना, मैं बिब्बो की माँ चल अंदर जा
2: सरकार।
1: चल बिब्बो की माँ, बिब्बो की माँ जी कहाँ है? तुम्हारे वास्ते क्या लेके आया आके ना देखो तो सही।
3: काई को तो भी चीर चीर को गल्ला फाड़ ले रही थी, आ रही हूँ बड़ी ना। हाँ क्या लेके आए बोलो, काई को चीर रहे थे?
1: अजी क्या नहीं लेके आया पूछो, खजाने की कुंजी लाया, बल्कि खजाना ही लाया समझो ना।
3: अब बताते ही नहीं, बकते जाते हैं,
1: बिकते जाते हैं। क्या बिकते समझा नहीं, क्या बिकते जाते?
3: अब बताते ही नहीं, बकते जाते हैं बनी।
1: तो मैं इतना भी भरा नहीं हूँ, चीज से कहीं बोल रहे। अच्छा अच्छा तुम सिर पे मसाला पीछे तो बैठ के पूछो जरा।
3: चलो बैठ गई, अब बताओ क्या लेके आए बताओ।
1: देखो अपने घर का खर्चा बढ़ गया बोलते थे ना तुम, अब अपना खर्चा कम हो गया समझो। किताब ला ले हूं, उसके अंदर साबुन बनाने की तरकीब है, लिपस्टिक बनाने की तरकीब है, पोस्ट पाउडर बनाने की तरकीब।
3: तुमको कुछ ख्याल है
1: क्या?
3: अजी बुढ़े की औकात ये मेरी उम्र है, ये लिपस्टिक पाउडर ये सब लगा लेने की?
1: क्यों क्या हो? अरे पुराने मकानों को चूना डालते हैं
3: क्या?
1: पुराने मकानों का ही मेंटेनेंस करता है। नहीं एक बात बोलो, पुराना कमा लो। अच्छा क्या बोल रहे थे बोलो, क्या क्या है बोलो।
3: ये देखो मैं बोल रही थी, अपनी बेटी बिब्बो देखते देखते जवान हो गई, उसका तुमको कुछ ख्याल है?
1: हैवान हो गई? कौन हैवान हो गई?
3: हैवान नहीं, हैवान नहीं, जवान जवान। अपनी बिब्बो की बात बोल रहे हो, जवान हो गई, उसका तुमको कुछ ख्याल है?
1: बिब्बो का कैसा ख्याल?
3: छूबा तुमसे भी एक मुसीबत है जी मेरे को, अव्वल तो कोई बात सुनते नहीं, सुने तो समझते ही नहीं।
1: हाँ तो सिरे सिर काई को मार ले रहे, 25-30 बरस से मेरा भेजा चार गए कुछ भी चीज समझ में आए बोलो समझ में आए। अरे बकबक बकबक बकबक करके मेरे कानों के पर्दे फाड़ डाले, अब क्या हाथ सुनेगा मेरे को?
3: मैं तो भी नहीं, अंगार लग जाएंगे तुम्हारे संसार को, मैं कुछ तो भी कर लेंगी। अरे तुमसे बात करना क्या है, आफत बोल लेना है, एक बोले तो 10-9 माता निकाल कर रख देते हैं।
1: अरे अरे अरे बिब्बो की मार, बैठो अरे क्या है जी ऐसा, नाक को गुस्सा रखे तो कैसा होगा? अब मैं तुम्हारे से मजाक नहीं करा तो किससे करूंगा?
3: आई चलो बेटा।
1: अच्छा जान लो भाई वो क्या बोलना है, जरा जोर से बोलो सुने आए सरिता, जरा समझा के बोलो समझ में आए सरिता, और जरा गुस्से को उठा के कोने में रख दो बिब्बो की माँ। नहीं बुरा ना कमानो, गुस्सा तुम्हारी नाक को है।
3: ए देखो मैं बोल रही थी, अपनी बच्ची बड़ी हो गई,
1: बड़ी हो गई,
3: उसकी शादी वादी का कुछ इंतजाम हो गया तो अच्छा है।
1: दादी का इंतजाम? अरे दादी को 60 रुपए वजीफा है, खुशी भाई कपड़े बनाते हैं, मैं कपड़े
3: आई आई आई आई यार क्या तो भी हो गया जी बिब्बो के बाबा तुम्हारे को। अरे भाई एक बोलो तो एक सुन रहे, दिन को दिन तुम्हारा ये भैरापन बढ़ता

0: मैं बोल रही हूँ जाओ दवाखाने में बता ले तुम।
1: आज 15-20 बरस से नहीं गया, अब जाता हूँ दवाखाने। अंग्रेजी दवा खाने में बात करेंगे, चीरते फाड़ते उसके अंदर खैचियां चुमटे भूलके टाके दे।
0: अच्छा अच्छा मुंगा बेटा, बहस नको करो, बात को आके नको बनाओ। ये देखो मैं ये बोल रही थी, बच्ची की शादी हो गई तो अच्छा है जी, उसकी मेरे को बहुत फिक्र है। देखो
1: फिकर तुमको ही है, मेरे को फिकर नहीं है। तुम ही बच्ची की अम्मा है, मैं बच्ची का बाप नहीं हूँ। अरे कैसे दिल जलाने की बात करते, दीपो की माँ तू है। फिकर मेरे को भी है, मगर मैं क्या करूँ। आजकल अच्छा शरीफ खानदान का बच्चा तो मिलता नहीं, उस पे नौकर चाकर पढ़ा लिखा बच्चा तो मार्केट से गायब हो गया है। अब थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेता जी, 1000-1500 रुपए कमाते ही दौरी में 50,000 रुपए होना, 1,00,000 रुपए होना। और दूसरी बात, तुम बुरा नहीं माने तो बोलो।
0: मैं क्या मानती हूँ बुरा?
1: मानते हैं बिल्कुल, बोला नहीं तो कहीं को बोलता था।
0: नहीं मानती बोली ना मैं,
1: नहीं मानती ना।
0: अरे अब बोलते हैं क्या करते हैं?
1: बोलता हूँ, बोलता हूँ,
0: बोलो।
1: चला इस बात से मैं बोलने को डरा था। ये देखो लोग पैगाम लेकर आते, तुम लड़के निकाल दे, हमारे पास देने दिलाने को तो कुछ है है ना। अब अखलाक मुरव्वत भी नहीं रही तो बच्ची बैठेगी, बैठी रह जाएगी। देखो बोल दे रहा हूँ तुम्हारे को, या तो तुम बच्ची की शादी का ख्याल छोड़ो या गुस्सा करना छोड़ो।
0: मैं लड़को निकालती हूँ। किस किस को लड़को निकाली थी मैं?
1: क्यों भाई, वो सैयद साहब के बच्चे का पैगाम आया तो तुम लड़को खराब नहीं करे? नहीं दी तो लोग बोलते होंगे बुढ़े की वक्त बच्ची की अम्मा को इतना गुस्सा है तो बच्ची को कितना नहीं गुस्सा होगा। मुझे सोचना हुए वो पाप बिचारों को क्या मालूम बच्ची बाप के ऊपर गई तो।
0: अये बच्ची बाप के ऊपर गई तो क्या मालूम? क्यों जी, तुम जब देखे जब मेरे को बदमिजाजी का गुस्से का ताना देते रहते
1: हैं,
0: मैं तुम्हारे को डरा कर धमका कर रखूं बोलते बोलते
1: बताए बोलते बोलो।
0: अजी मैं इतनी बुरी थी तो खाई उधर बुलाए थे मेरे को? मेरे भाइया तुम्हारी खुशामद को गए थे, मेरे अम्मा बाबा तुम्हारे पैरों पट्टे को गए थे। अये भूल गए वो दिन, हमारी चौखट पे आकर दिन में 10-10 वक्त 10-10 डिब्बों के बाबा 10-10 वक्त नाक रगड़ते थे तुम लोग, तब कहीं हमारे अम्मा बाबा जाके तरस खाकर तुम्हारे को दिए।
1: सही बोले डिब्बो की माँ, 10 वक्त नहीं 100 वक्त नाक रगड़े तुम्हारी चौखट
0: रगड़े होंगे,
1: हमें हमारी मर्जी से आके फंसे। हमको क्या मालूम था वो दुबली पतली शर्मीली बच्ची जाके ऐसा पुलिस का थानेदार हो जाएगी। बैठे तो दीपक की माँ, मेरे को भी बहुत से पैगाम आते थे, हाथ जड़े 1,000 पाँव जड़े 50, मगर आके तुम्हारा खिदमत में था जोड़ा कर लिए। अभी वो छोड़ो लोग, अब बेटी बोले तैयार है,
0: अब बेटी बोले तैयार है, शहजादे गुलफाम है ही लोग, बात करे तो मोतियां झड़ रहे, हंसे तो हीरे टपक रहे, बड़े खूबियों के आदमी नहीं ना इनको कहते लोग, अब पट्टियां देने को तैयार है कहते। हालत देखो
1: बुद्धू जी, माँ कलेक्टर का बेटा हूँ, कलेक्टर का बेटा।
0: जी हाँ कलेक्टर बाबा के होंगे तुम्हारे, तुम क्या है?
1: बोलना क्या है? शेर का बच्चा शेर। अक्कल तुमको नहीं है, दुनिया को दीवाना समझते हो तुम, चलिए। अरे क्या शायर शायरी करा तो शायर हो जाता?
0: नहीं तो, नहीं तो
1: मिजाज शायराना होना बड़ी बात है। वैसी मैं कलेक्टर नहीं हुआ तो क्या होता, मेरी तबीयत कैसी है देखो।
0: अच्छा।
1: कैसा उठता हूँ, कैसा चलता
0: हूँ,
1: कैसा देखता हूँ।
0: बस करो बस करो।
1: अरे एक घर में तुम्हारे से दब के रहा तो क्या होता, बाहर निकल के देखो लोग थर कांपते हैं देख के मेरे।
0: कौन कांपते हैं कि वो चूहे तुम्हारे को देख के थर? तुम यहाँ बैठो जी, बैठो यहाँ। ये देखो ये ज्यादा बकबक करके मेरा सिर नको दिखाओ, एक बात बोलो तुम बच्ची की शादी का क्या करते?
1: बच्ची की शादी का क्या करते हैं बोले तो क्या हो? एक बच्चा ढूंढ के लाया था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, शरीफ खानदान का था। अरे मोहम्मद शरीफ की बात बोलो। अरे चिराग तो चिराग, पेट्रोमैक्स लेकर ढूंढे तो ऐसा बच्चा नहीं मिला, मगर तुम्हारे को पसंद आ रहा ना, तुमको तो पसंद ही नहीं आया, पसंद

0: है
1: तुम्हारी। कैसे दिल जलाने की बात करते जी बिब्बो के बाबा, नाजो नेमत से फूल के वैसे पाले से बच्ची को उठा को नहीं अदना वो कस्टम के चपरासी को कैसा दे दीजिए जी।
0: अरे पागल पने की बात, अरे छोटी नौकरी छोटी तनख्वाह को कोई नहीं देखता।
1: फिर क्या देखता है?
0: ऊपर की आमदनी को देखता है या कस्टम के चपरासी को? तो थोड़ी आमदनी होती समझ रहे तुम
1: भाई। तो क्या दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, नहीं तो भी नहीं बात। ये कितना काला था उन्हें?
0: साला था। किसका साला था? कौन साला था जी?
1: साला नहीं काला, काला तुम्हारे मोहम्मद शरीफ को बोल रहे हो, बहुत काला था उन्हें।
0: बेवकूफी की बात। अरे मर्दों के रंग को कौन देखते बीबो की माँ? अच्छा हम गोरे थे, कटी नहीं कटी जिंदगी
1: कटी,
0: क्या फर्क पड़ा बोलो। खैर जान दो भाई, ये हमारी नोकझोंक तो होते रहती है हमेशा। तुम भी आने जाने वालों को बोलते रहो, मैं भी हमारे मिलने वालों को बोलता। अरे भूलिया जी तुम्हारे को बोलना
1: क्या,
0: पर तुम है उसका भाई मिले थे।
1: अच्छा
0: उनका बच्चा अमेरिका से आया हुआ है तो
1: फिर कुछ काम की बात करें, खाली खुली करा दिया उनको।
0: मैं कैसा बोलता हूँ, लड़की का बाप होके उन्होंने खुद बोले चांद खान भाई
1: हा?
0: तुम्हारी बच्ची को मैं मेरे बच्चे को कर ले।
1: या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, मेरे बच्ची की शादी हो गई तो दरगाह को जाकर चद्दर चढ़ाऊंगी, मिठे घोड़े बना को छोड़ूंगी रे अल्लाह।
0: मिठे घोड़े बना को छोड़ूंगी? अरे बात ही पक्की नहीं, मिठे घोड़े चढ़ा दे रहे चद्दर चढ़ा क्या है। तो मैं बोला उन्हें बोले मेरे को चांद खान भाई
1: हा?
0: तुम्हारी बच्ची को मैं मेरे बच्चे को कर ले। क्या बोलते तुम?
1: फिर तुम क्या बोले?
0: मैं बोला नहीं, जब तक मैं अपनी जोरों से नहीं पूछूंगा मैं जवाब नहीं दे
1: सकता। जरा ख्याल आया जी तुम्हारे को
0: क्या?
1: गैर लोगों के सामने जोरू जोरू बोलते हुए।
0: जोरू है तो जोरू बोला, नहीं तो क्या अम्मा पुकारू?
1: अम्मा कौन पुकारे बोला बाबा, तुम्हारी अक्ल में नहीं आता तो कम से कम अड़ोस पड़ोस वाले पुकारते से सुन के तो भी पुकार।
0: क्या क्या पुकारते अड़ोस पड़ोस वाले?
1: ये देखो उन्होंने पुकारते नहीं भी
0: क्या?
1: अपने घर में अपने मकान में नहीं तो हमारे महल में पुकारना।
0: महल में पुकारना तुम्हारे को तो देखो बिब्बो की माँ नई नई शादी हुई, नए नए दूल्हा दुल्हन रहे, महल पुकारते जरा अच्छा भी। अब तुम्हारी हमारी शादी हो गई 25-30 साल हो गए, तुम महल जाकर पुराना खिला हो गए। अरे पाशा जरा पानी लेके आनिया। बिब्बो की माँ,
1: बिब्बो की माँ को कुछ न को
0: देखो एक बात
1: हाँ।
0: अपन गरीब आदमी
1: हाँ।
0: हाँ। महल का ही मकान का ही ये का ही वो का ही पुकारना, एक एक नाम से पुकार देते।
1: क्या पुकारते हैं?
0: झोपड़ी पुकार देते।
1: झोपड़ी पुकारते हैं
0: हाँ।
1: कुछ भी न को पुकारो, खाली बिब्बो की अम्मा पुकारो बस।
0: बिब्बो की माँ
1: हाँ?
0: पहले बोलो बच्चा कैसा होना, नहीं तो तुम बाद में 10 साहबा निकाल दो। उन्हें काला था, उन्हें काला था, उन्हें हमका था, उन्हें धमका था, कैसा होना बच्चा पहले ही बोलो।
1: अब बच्चा कैसा होना बोले तो क्या बोलूं जी, देखो गोरा कुंता होना, पढ़ा लिखा होना, नौकर चाकर होना।
0: क्या क्या क्या क्या होना बोलू?
1: पढ़ा लिखा होना, नौकर चाकर होना, गोरा कुंता होना बोली।
0: तो वाह ये शमला ऐसा आ गया, कहीं नहीं सुने आ रहा समझ रहे होंगे तो शमले की वजह से। क्या होना बोले?
1: सो होना भैरव माठी बिना नहीं होना बोले। तो वाह मेरे तो उम्र कट गई थी तुम्हारे पीछे देखते देखते, कुछ भी हो जाओ मैं कर लेंगे क्या करूं।
0: वाह वाह वाह, अरे वो तो भैरव था बोल वो कट गई, तो बराबर सुनने वाला रहता तो तुम्हारी कड़वी कसीरी सुन के फांसी पे लटक जाता था समझे। मोहब्बत का अच्छा सिला दे रहे तुम, क्या मरने के रास्ते तुम कुछ मालूम है? मैं भी जाके रेल के पटरी पर सो जा रहा हूँ।
1: आज
0: कल
1: रहना देर से आ रहे
0: नको जाओ
1: नको जाओ।

0: जाओ जी जाओ, चलो
1: बहुत अच्छे माँ बाप का नाम निकाल रहे, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिए समझे। वाह वाह वाह,
2: वो झलका था।
1: अरे कोने में देख जा, चाय का पानी चढ़ा के जल्दी आओ। चाय की पानी थोड़ा जल्दी लेके आ। अंदर नहीं आता ना, अभी दो मिनट पहले माई बीबो की माँ याद करे तुम्हारे का
2: अभी याद करे,
1: बहुत बड़ी उम्र है
2: तुम्हारे। भाभी को सलाम बोलो।
1: अच्छा अजी बीबो की माँ हमारे महिम खान भाई तुम्हारे को सलाम बोलो,
0: मेरे तरफ से भी सलाम बोलो। घर में सब खैरियत से है क्या?
1: महिम खान भाई उन्हें भी सलाम बोल रहे हैं। घर में सब खैरियत से है क्या?
2: हमारे घर में भी तुम बहुत सलाम बोले, सब खैरियत से है क्या? पूछो
1: घर में सब खैरियत से है कहते। भाभी तुम्हारे को बहुत बहुत पूछे कहते।
0: अजी भाभी को भी सुना रहे कहते,
1: अभी एक टप्पागिरी करते बैठे
0: क्या
1: है? अरे बच्ची की बात कर रहे हैं, पूरा
0: कर
2: हमारा बच्चा आ गया अमेरिका से, हिंदू
1: अमेरिका से आ गया। अच्छा
2: अब जाते बोल रहा हूँ
1: जान जो।
2: अरे अरे चले जाके वहाँ कोई अंग्रेजी में शादी कर जाए तो अपनी नाक में कर जाती।
1: कट जाती कट जाती, वो तो है
2: विश्वास से जल्दी शादी वादी कर देना।
1: हाँ कर दो। अच्छा क्या
0: ये देखो इधर सुनो।
1: हाँ
0: अजी बच्चे को देखने लायक थे संगत, हमें लोग भी एक नजर देखे ऐसा होता था।
1: हमारे मकान में बोल रहे हैं बच्चे को भी तुम सजा चाहते तो जरा हम भी देख लेते थे।
2: अरे क्या
1: अरे क्या ये आपका बच्चा है?
2: जी हाँ।
1: नहीं ये सलाम वलाम नहीं करा, हाय हाय हाय हाय करा।
2: ऐसा है चांखा भाई अमेरिका से आए आए बोल रहा हूँ
1: मैं।
2: क्या नाम है बेटे तुम्हारा?
3: एडी।
2: हड्डी? हड्डी नहीं हिंदू था ना, एडी कर लिया हमने।
3: एडी
1: नाम का भी अंग्रेजी में तर्जुमा कर लिया हमने अमेरिका को जाके।
0: देखो
2: जानखा भाई इसको नहीं पहचान तो?
1: नहीं
2: सही बोलो।
1: अरे नहीं पहचाना क्या है?
2: अरे इन्हें दू है बचपन में तुम्हारा शमला लेके नहीं भागता था।
1: अरे दू है कहते हैं बदमाश।
0: अजी नहीं दू है माई, जब से इसको पत्ती समझ रही थी ना।
1: फैशन ही जो ऐसा है तो क्या
2: कर वही फैशन का बात।
0: अजी ये देखो अब इधर उधर के बात ना करो, बच्चा वहाँ पे काम क्या करता पूछो।
1: महका भाई वहां से बोले तो सुने नहीं चाहिए। बच्चा वहाँ क्या काम करता पूछो।
2: अब काम क्या करता? बहुत काम करता चांखा भाई ने। हमारा जो अमेरिका में परसों खाता अमेरिका से फौरन आ जाओ, अमेरिका का आधा काम रुका हुआ है बोल के।
1: अमेरिका का काम रुका हुआ है। अच्छा वहाँ क्या काम करते बेटे? होटल में बर्तन धोते
2: मशीन। मशीन
1: बर्तन मशीन से कपड़े
2: कपड़े मशीन मशीन बिग मशीन ऐसा डर्टी कपड़ा डालेगा
1: डर्टी कपड़ा अरे रंग वैसी है नहीं इसका
2: उसमें डालेगा ऐसा ओके कपड़ा डाला
1: हाँ
2: उसमें सोप डाला ऐसा बॉटल दबाया
1: हाँ मशीन पूरा काम है फिर झाड़ू
2: नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम
1: मशीन
2: क्या
1: ऐसा है मेरे को भाई अब कपड़े धोना बर्तन धोना झाड़ू देना खुद करे तो भी उससे छोटा मशीन से करे तो भी वो
2: चालखा भाई वैसा नहीं है ये काम ऐसे मशीन कर दी मेरा बच्चा खाली बटन दबाने पर है
0: भाजी पिपो के बाबा इधर भी सुनो अजी क्या खामा खा के माथा लेके बैठे बच्चे की आमदनी कितनी है पूछो
1: हमारे मकान में पूछाई बच्चे की आमदनी क्या है
2: अब आमदनी कैसा समझो चालखा भाई परसों प्लेन से ऐसा उतरा
1: अच्छा
2: उधर प्लेन खरीदते बोल रहा
1: हूँ
2: प्लेन खरीदते बोल रहा था मैं बोला बेटे घर में जगह नहीं है कल यार छोटे पंखे पिंखे मुड़ जाएंगे समझा मना के वहां से रक्षे में लेके निकला मैं
1: ये प्लेन में से उतर के रक्षे में बढ़ गए
2: अरे टैक्सी में ऑटो में गए तो सिटी के नहीं देख सके ना उसके वहां से रक्षे में लेके और निकलना भी एक गुना हो गया
1: क्यों
2: अरे चार मिनार के पास देते रुक जाओ
1: क्यों
2: चार मिनार खरीदते होगा
0: चार मिनार खरीदा गए
2: फिर क्या बात अच्छा हुआ बेचने वाला नहीं था बोल के वहां पे अरे बाबा तेल से नाक पे दबा दे रे आउट सी ग्लो वो दे दे से तो आउट सी
1: मेरे का भाई मेरे का भाई ये बच्चा सी क्या बोल रहा
2: है वो ऐसा है बच्ची को सी ना प्रो ना था क्या पूछ रहा है
1: वाह वाह तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी होगी बच्चे की सोबत में अजी बच्ची को सीना पूरा ना बोल रहे तुम
2: जी
1: ऐसी एम्ब्रॉयडरी करती बच्ची हमारे महरूखा भाई पर तो तकिए के गिलास पे एक गुलाब का फूल निकाली देखो एम्ब्रॉयडरी तो पानी गिरा दो सूखने के वास्ते आंगन में रखे
2: फिर
1: अरे रखने की देर थी भावरे तितलियां
0: पाकरनिया
1: ऐसा जो है इतने
2: तारी तो अबाउट सी गर्ल यू नो
1: गो गो गो गो गो
2: अबाउट सी गर्ल
1: अरे क्या बोल रहे थे
2: अच्छा
1: तू बोल अरे चलो ना ये
2: आप कैसा बोलूं चालखा भाई बच्चा बच्ची को देखते हो बोल रहा है
1: अरे क्या दिमाग ना खराब हो गया उसका क्या है आ? शादी तुम्हारी भी हुई शादी से पहले तुम भाभी को देखे थे क्या
2: नहीं देखे थे भाई
1: तरीका होता चाहिए
2: हम नहीं देखे थे हमारा तरह कर लिया था समझा के देखो
1: अरे क्या मुँह लेके बोलूंगा मैं
2: जाके तो कुत्ता नहीं कर सकते
1: बेकार
2: जाके देखो तो
1: अरे क्या बोलूंगी मैं
2: अरे जाओ यार यही तुम उधर रहे पहले
1: की माँ मयूखा भाई जो है बहुत अच्छा मशवरा दिए उन्होंने बच्ची बच्चे को और बच्चा बच्ची को देख लिए तो बहुत अच्छा था
0: कैसे हौले पने की बात कर रही थी तुम जवान बच्ची को मैं ना महरम लोगों के सामने निकाली तो लोग पान खाकर थूकेंगे
1: थूकते थूकते थूकते
2: अरे नहीं जमाना तरक्की कर लिया आज भी चांद पे चलेगा बताओ कुछ समझाओ
1: दीपक की माँ वो आदमी चांद पे चलेगा और जमाना बहुत तरक्की कर जाएगा तो
0: ये देखो तुम थाली में के बैगन के वैसा इधर उधर न करो समझ गए ना जमाना खुद तरक्की वरक्की नहीं करा बोल दो
1: नहीं करा कहते तरक्की
2: असल में तुम्हारे में दम नहीं तुम समझा ले सकते चल बेटे
1: अरे अरे
2: क्या
1: है भाई
2: थोड़ा क्या नहीं मना सकते
1: देखो मोहल बच्चा हूँ
2: बहुत मोगल होंगे
1: उसकी जिंदगी से नको खेलो मना मत
2: सही बात है अगर तुम मोगल है तो ये बात मना के देखो देखो मैं
1: देख नहीं मनाओ
2: मनाओ
1: देख टाइम
2: देख तो मना ना
1: दीपक की माँ
0: क्या है
1: मैं काफी गौर करने के बाद ये फैसला करा बच्चा बच्ची को देखेगा
0: नहीं
1: मैं बोल रहा हूँ बच्चा बच्ची को देखेगा
0: मैं बोल रहा हूँ नहीं देखेगा
1: ये मेरा हुक्म है बच्चा बच्ची को देखेगा
0: दिमाग खराब हो गया तुम्हारा एक बार बोल दिया नहीं देखेगा नहीं देखेगा नहीं

नोक झोंक नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री मकसूद अली की लिखी ये नोक झोंक सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे असलम फरशोरी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री मोहम्मद हिमायतुल्ला, मुस्तफा अली बेग, महमूद खान, मोहम्मद शफी और आयशा जलील। ये नोक झोंक 23 सितंबर 1994 को नाट्य संध्या के अंतर्गत मावलंकर सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी।

ये आकाशवाणी जैसमे का गोल्डन सिटी चैनल है। रात के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को।

छीने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हम

झुकी झुकी से घटाएं बुला रही है तुम, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें।

इश्क अजाए बुला रही है तुम, खामोशियों की सदाए बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाए।

0: les mains.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।

आबरू तेरा इश्क है मेरी, आबरू तेरा इश्क है मेरी, आबरू दिल इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जब तक

बहशते दिल रसनों दार से रोटी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोटी ना गई। क्योंकि वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है।

0: जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। जिस आगा नहीं शेख ब्रह्मन दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क।
1: इश्क ना पूछे भाई, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता इश्क के हाथों पर लहू विच घुटियां लख पर आता दिया दे इश्क।
0: राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी।

दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला और फिर अर्ज करी के

0: अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, काक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है के बंदे को खुदा करता है इश्क।
1: अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी के लिखे इन्हीं फिल्मी गीतों को। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। रात के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रेडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे
1: हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।